मीडियम वेव 238.09 मीटर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तद अनुसार 5 जून 2026, सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम आराधना की शुरुआत करते हैं समूह स्वर में इस देशकान से।

इस देशगान के बाद आइए सुनते हैं पंडित राजन और साजन मिश्र की आवाज़ में गणपति वंदना।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं पंडित राजन और साजन मिश्र की आवाज में श्री राम भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का आलेख क्रोध। संकलन एवं वाचन स्वर हैं प्रियंका सिंह के।
1: क्रोध मनुष्य की स्वाभाविक भावनाओं में

0: स्वर हैं प्रियंका सिंह के।
1: क्रोध मनुष्य के स्वाभाविक भावनाओं में से एक है। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो किसी अप्रिय घटना, अपमान, असफलता, अन्याय या मन के विरुद्ध परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। सामान्य रूप में क्रोध एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, लेकिन जब यह आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तब यह व्यक्ति के जीवन, संबंधों और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यही कारण है कि क्रोध को विनाश का कारण माना गया है। क्रोध का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह मनुष्य की सोचने और समझने की क्षमता को प्रभावित कर देता है। गुस्से में व्यक्ति सही और गलत का अंतर भूल जाता है। वह भावनाओं के प्रभाव में ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका परिणाम बाद में पछतावे के रूप में सामने आता है। कई बार एक पल का गुस्सा वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ देता है। परिवारों में बढ़ते विवाद, मित्रता में दूरी और समाज में हिंसा की घटनाएं अक्सर अनियंत्रित क्रोध का परिणाम होती हैं। आज का जीवन अत्यंत व्यस्त और तनावपूर्ण हो गया है। प्रतिस्पर्धा, काम का दबाव, आर्थिक चिंताएं और व्यक्तिगत समस्याएं लोगों को मानसिक रूप से अस्थिर बना रही हैं। परिणाम स्वरूप छोटी छोटी बातों पर लोग अपना धैर्य खो बैठते हैं। सड़क पर मामूली बहस झगड़े में बदल जाती है। घरों में छोटी असहमति बड़े विवाद का रूप ले लेती है और कार्यस्थलों पर क्रोध के कारण संबंध खराब हो जाते हैं। आधुनिक जीवन शैली ने मनुष्य को सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन उसके भीतर सहनशीलता कम होती जा रही है। क्रोध केवल मानसिक अशांति ही नहीं बढ़ाता बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। अत्यधिक गुस्सा करने से रक्तचाप बढ़ता है, हृदय पर दबाव पड़ता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। चिकित्सा विज्ञान भी यह मानता है कि लगातार तनाव और क्रोध व्यक्ति को कई गंभीर बीमारियों की ओर ले जा सकता है। गुस्से की अवस्था में शरीर में ऐसे रसायन सक्रिय हो जाते हैं जो लंबे समय तक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए क्रोध केवल मन का ही नहीं शरीर का भी शत्रु है। क्रोध का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। जब व्यक्ति अपने व्यवहार में संयम खो देता है तब समाज में हिंसा, अपराध और कटुता बढ़ने लगती है। आज अनेक अपराध केवल क्षणिक क्रोध के कारण हो जाते हैं, बाद में व्यक्ति को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखें। हमारे धर्म ग्रंथों और महापुरुषों ने भी क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि का विनाश हो जाता है। भगवान बुद्ध ने प्रेम, करुणा और धैर्य का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से यह सिद्ध किया कि शांतिपूर्ण व्यवहार से भी बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इन महान व्यक्तियों का जीवन हमें यह सिखाता है कि धैर्य और संयम ही सच्ची शक्ति है। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए आत्मसंयम और सकारात्मक सोच आवश्यक है। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत रहना चाहिए। गहरी सांस लेना, ध्यान और योग करना, संगीत सुनना तथा सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना मन को शांत रखने में सहायक होता है। क्षमा की भावना भी क्रोध को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम दूसरों की गलतियों को समझने और माफ करने की आदत डालें तो जीवन अधिक शांत और सुखद बन सकता है। संवाद की कमी भी कई बार क्रोध का कारण बनती है। जब लोग एक दूसरे की बात समझने के बजाय तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं तब विवाद बढ़ने लगते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम धैर्य पूर्वक दूसरों की बात सुनें और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखें। मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार कई समस्याओं को बिना किसी विवाद के हल कर सकते हैं। वास्तव में क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह उत्पन्न होती है। यह मन की शांति, रिश्तों की मधुरता और जीवन की खुशियों को नष्ट कर देता है। इसके विपरीत धैर्य, प्रेम और सहनशीलता जीवन को सुख, संतुलन और सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर आत्मनियंत्रण विकसित करें और क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दें। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत और बुद्धिमान कहलाता है। जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए ये जरूरी है कि हम संयम, धैर्य और सकारात्मक सोच को अपनाएं। तभी हम स्वयं भी सुखी रह पाएंगे और समाज में भी शांति और सौहार्द का वातावरण बना सकेंगे।
0: कार्यक्रम विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे आज का आलेख क्रोध, संकलन एवं वाचन स्वर थे।

प्रियंका सिंह के। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं, अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निम राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निम ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं।

0: भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस का गायन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात में सामयिक सुझाव का विषय धनिया एक लाभकारी फसल।
1: सही विश्व में भारत देश को मसालों की भूमि के नाम से जाना जाता है। धनिया मसालों वाली फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके दानों में पाए जाने वाले वाष्पशील तेल के कारण यह भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट एवं सुगंधित बनाती है। धनिया के बीज एवं पत्तियां भोजन को सुगंधित एवं स्वादिष्ट बनाने के काम आते हैं। धनिया अम्बेली फेरी कुल का एक वर्षीय मसाला फसल है। धनिया के कुल उत्पादन का एक बड़ा भाग श्रीलंका, जापान, सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका व मलेशिया को भेजा जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा की आय होती है। इसकी पत्तियां एवं मुलायम तने चटनी बनाने तथा शाक भाजी व सूप सलाद को स्वादिष्ट बनाने में सहायक हैं। यदि कृषक इसकी वैज्ञानिक ढंग से खेती करें तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धनिया एक बहुमूल्य बहु उपयोगी मसाले वाली आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी फसल है। धनिया के बीज एवं पत्तियां भोजन को सुगंधित एवं स्वादिष्ट बनाने के काम आते हैं। धनिया बीज में बहुत अधिक औषधीय गुण होने के कारण कुलिनरी के रूप में कार्मिनेटिव और डायरेटिक के रूप में उपयोग में आते हैं। भारत धनिया का प्रमुख निर्यातक देश है। धनिया के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। इसके साबुत दाने या पीसकर अचार, सॉस और मिठाइयों आदि खाद्य पदार्थों को सुगंधित करने के काम में लेते हैं। वाष्पशील तेल से सुगंधित द्रव्य व खुशबूदार साबुन बनाए जाते हैं। इसके अलावा यह तेल चॉकलेट, कैंडी, सीलबंद भोज्य पदार्थों, सूप व मदिरा को सुगंधित करने में प्रयुक्त होता है। इसमें मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होता है। यह विटामिन सी, विटामिन के और प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। इसमें बहुत कम मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, थायमिन और कैरोटीन भी पाया जाता है। ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करने और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। पाचन तंत्र के लिए भी विशेष रूप से फायदेमंद है। ये लीवर की सक्रियता को बढ़ाने में मदद करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी एक काफ़ी फायदेमंद है। यह ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है। धनिया पत्ती में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अर्थराइटिस में भी बहुत उपयोगी है। मुंह के घाव को ठीक करने में भी ये काफ़ी कारगर होता है। इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक गुण मुंह के घाव को जल्दी भरने का काम करते हैं। नर्वस सिस्टम को सक्रिय बनाए रखने में भी धनिया की पत्ती काफ़ी फायदेमंद होती है। त्वचा संबंधी कई रोगों जैसे पिंपल्स होने की समस्या, ब्लैक हेड्स और सूखी त्वचा में इसके इस्तेमाल से काफ़ी फायदा होता है। जलवायु शुष्क व ठंडा मौसम अच्छा उत्पादन करने के लिए अनुकूल होता है। बीजों के अंकुरण के लिए 25 से 26 डिग्री तापमान अच्छा होता है। धनिया शीतोष्ण जलवायु की फसल होने के कारण फूल एवं दाना बनने की अवस्था पर पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। धनिया को पाले से बहुत नुकसान होता है। धनिया बीज की उच्च गुणवत्ता एवं अधिक वाष्पशील तेल के लिए ठंडी जलवायु, अधिक समय के लिए तेज धूप, समुद्र से अधिक ऊंचाई की आवश्यकता होती है। धनिया की सिंचित फसल के लिए अच्छा जल निकास वाली दोमट भूमि सबसे अधिक उपयुक्त होती है और असिंचित फसल के लिए काली भारी भूमि अच्छी होती है। धनिया क्षारीय एवं लवणीय भूमि को भी सहन नहीं करता है। अच्छे जल निकास एवं उर्वरा शक्ति वाली दोमट या मटियार दोमट भूमि उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। सिंचित क्षेत्र में अगर जुताई के समय भूमि में पर्याप्त जल ना हो तो भूमि की तैयारी पलेवा देखकर करनी चाहिए, जिससे जमीन में जुताई के समय ढीले भी नहीं बनेंगे तथा खरपतवार के बीच अंकुरित होने के जुताई के समय नष्ट हो जाएंगे। बरानी फसल के लिए खरीफ फसल की कटाई के बाद 2 बार आढ़ी खड़ी जुताई करके तुरंत पाटा लगा देना चाहिए। धनिया की फसल रबी मौसम में बोई जाती है। धनिया बोने का सबसे उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है। धनिया की सामयिक बोनी लाभदायक है। दानों के लिए धनिया की बुआई का उपयुक्त समय नवंबर का प्रथम पखवाड़ा है। हरे पत्ते

0: की फसल के लिए अक्टूबर से दिसंबर का समय बिजाई के लिए उपयुक्त है। पाले से बचाव के लिए धनिया को नवंबर के द्वितीय सप्ताह में बोना उपयुक्त होता है। बीज दर सिंचित अवस्था में 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज तथा असिंचित में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। भूमि एवं बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को कार्बेंडाजिम और थायरम 2:1 3 ग्राम प्रति किलोग्राम या कार्बोक्जिन 37.5%, थायरम 37.5%, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम, ट्राइकोडर्मा बीर्डी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को स्ट्रेप्टोमाइसिन 500 ppm से करना लाभदायक है।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:51 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

सुबह 7 बजे कार्यक्रम गुंजे जंगल में आज आप सुन सकेंगे कुछ सरगुजिया लोकगीत। कलाकार होंगे अमरनाथ और साथी शोभा बाई और भगत सिंह गोंड़। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे जनसंपर्क विभाग से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम इनसे मिलिए। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आप सुन सकेंगे सुबह 9 बजे। सुबह 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। प्रस्तुत करता होंगे प्रमेंद्र कुमार। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन। कार्यक्रम में आज सामूहिक चर्चा का विषय होगा विश्व पर्यावरण दिवस। साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे ऊर्जा संरक्षण पर चर्चा। कार्यक्रम ईमेल की गूंज हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:40 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

0: हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे हेलो फ्रेंड्स। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। सामयिक चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस, ई वेस्ट तकनीक से बढ़ता पर्यावरण संकट। रात 8 बजे आप सुनेंगे इंस्टा फरमाइश। रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम राग प्रधान। साथियों, ये थी जानकारी हमारे आज के प्रमुख शेष कार्यक्रमों की। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:55 हुए हैं। संस्कृत समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्र दत्त सेमवालः। अथ वार्ताः।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के ठीक 7 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं अमरनाथ और साथियों के स्वरों में सरगुजिया देवी भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में इस गज़ल से।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा के आज के अंक में। नमस्कार, कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं गोपेश। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिका

सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए।

नमस्कार सरगुजा, शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्कर्ष योजना की प्रवेश परीक्षा स्थगित, कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए नई तिथि का इंतजार। 26 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा फिलहाल टली, शासन जल्द करेगा संशोधित कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना, जिसे पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना के नाम से जाना जाता था, के अंतर्गत कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रवेश प्रक्रिया एवं आमंत्रित संस्थाओं के इम्प्लॉयमेंट कार्य में विलंब होने के कारण यह निर्णय लिया गया। कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 26 जुलाई रविवार को दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा अब निर्धारित तिथि पर आयोजित नहीं होगी। कार्यालय कलेक्टर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों को इस संबंध में सूचित किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का आवेदन जमा नहीं किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आवंटित संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश शासन स्तर से प्राप्त होने के बाद परीक्षा नई तिथि एवं आगे की प्रक्रिया की जानकारी पृथक रूप से जारी की जाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए। उससे पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म नागिन का गीत।

नमस्कार सरगुजा। अगली खबर अंबिकापुर से। रामगढ़ महोत्सव 2026 का आयोजन 29 एवं 30 जून को। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रामगढ़ महोत्सव 2026 का आयोजन राम वनगमन पर्यटन परिपथ स्थल रामगढ़ में आषाढ़ माह के प्रथम दिवस के अवसर पर 29 जून 2026 एवं 30 जून 2026 को किया जाना है। रामगढ़ महोत्सव 2026 के सफल संचालन हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी एवं आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त सहायक नोडल अधिकारी होंगे। 5 जून को विकासखंड लखनपुर के लटोरी में 18 ग्राम पंचायतें हेतु जन समस्या निवारण शिविरों का होगा आयोजन। कार्यक्रम में कुछ और भी खबर सुनेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में फिल्म सरस्वती चंद का गीत।

नमस्कार सरगुजा, अगली खबर एमसीबी जिले से। विश्व साइकिल दिवस पर 7 जून को निकलेगी संडे ऑन साइकिल रैली। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश देंगे नागरिक। विश्व साइकिल दिवस 2026 के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल विशेष अभियान का आयोजन 7 जून 2026 रविवार को प्रातः 6 बजे से किया जाएगा। जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य आमजन में फिटनेस, स्वास्थ्य जागरूकता एवं नियमित शारीरिक गतिविधियों के प्रति सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना है। कार्यक्रम में कुछ और भी खबरें और भी गीत, उससे पहले आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में ये नगमा।

गीता दत्त की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म आर पार का गीत। कार्यक्रम नमस्कार नमस्कार सरगुजा में आइए सुनते हैं एमसीबी जिले की खबर। शासकीय पॉलिटेक्निक चिरमिरी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ। छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर उज्ज्वल भविष्य बनाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। शासकीय पॉलिटेक्निक चिरमिरी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में फिल्म पत्थर के सनम का गीत।

0: नमस्कार सरगुजा। एमसीबी जिले में 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। आईटीआई जनकपुर में करें ऑनलाइन आवेदन। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 जून। बलरामपुर जिले में अग्रणी जिला प्रबंधक एलडीएम ने जानकारी दी है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आगामी 6 जून 2026 को पूरे देश में कृषि ऋण आउटरीच कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में जिले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सभी 5 शाखाओं द्वारा कृषि ऋण आउटरीच कैंप आयोजित किए जाएंगे। श्रोताओं, इन्हीं गीतों और इन्हीं समाचारों के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का आज का अंक समाप्त होता है। कार्यक्रम के आज के अंक से मुझे यानी गोपेश को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: अभी आप सुन रहे थे जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात, उसके पश्चात मॉर्निंग न्यूज हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया।

0: रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: शास्त्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
1: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2 से 6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
0: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है।

0: लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament

श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं तो शहरों में कई ऐसी

अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट अस्पताल होते हैं जहां आसानी से स्वास्थ्य संबंधी कोई भी आपातकालीन स्थिति के लिए सुविधा प्राप्त हो सकती है। लेकिन यही जब हम गांवों में जाते हैं तो वहाँ चिकित्सा संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। ग्रामीण कुछ इलाके होते हैं जहाँ प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र पीएससी सीएससी जैसे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जहाँ आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। लेकिन कुछ ग्रामीण इलाके भारत में ऐसे हैं जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है और उन दुर्गम इलाकों में डॉक्टरों की मदद मिल

0: उपलब्ध होती हैं। लेकिन कुछ ग्रामीण इलाके भारत में ऐसे हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है और उन दुर्गम इलाकों में डॉक्टरों की मदद मिल पाना भी उतना ही कठिन होता है। तो श्रोताओं, अगर हम बात करें अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश की, तो हमारा छत्तीसगढ़ काफ़ी वन आच्छादित प्रदेश है और यहाँ कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहाँ चिकित्सा सुविधाओं की पहुँचने की आज भी दरकार है। और ऐसे ही कुछ स्थानों में ऐसे लोग कार्य करते हैं जो चिकित्सा सुविधाओं को ऐसे लोगों तक पहुँचाना सुगम बनाते हैं। और कहा जाता है कि किसी के स्वास्थ्य के लिए कार्य करना काफ़ी पुण्य का कार्य होता है। तो श्रोताओं, डॉक्टर रामचंद्र त्र्यंबक गोडबोले और सुनीता गोडबोले, जिन्हें गोडबोले दंपत्ति के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और अबूझमार के आदिवासी इलाकों में ये 40 वर्षों तक निस्वार्थ चिकित्सा सेवा दे रहे हैं और इन्हें वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी इलाका है वो काफ़ी दुर्गम है। इन्होंने मिलकर अब तक 1,00,000 से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज किया है। श्रोताओं, इसी सेवा के लिए इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनीता गोडबोले से। तो सुनीता जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार
0: जी। तो सुनीता जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में हम आपके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं वैसे पहले पुणे में ही रहती थी, मतलब मेरा जन्म और शिक्षा पूरा सभी मेरा पुणे में हुआ। और जब मैं शिक्षा ले रही थी तभी मेरे महाविद्यालयीन जीवन में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये जो अखिल भारतीय संगठन है, छात्र संगठन, उससे जुड़ी थी। और उनके जो वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता और अधिकारीगण, प्रोफेसर भी उसमें रहते थे, कुछ पूर्णकालिक जो कार्यकर्ता रहते थे, उनके द्वारा जो हमको जानकारी दे दिया जाता था या उनके साथ जो संवाद होता था हमारा, उसके कारण हमारे मन पर ये प्रभाव पड़ा कि भाई हमें समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और ऐसे समूहों के लिए करना चाहिए, ऐसे समुदायों के लिए करना चाहिए जिनको उसका, मतलब जो भी सामाजिक इसमें आगे बढ़ने के लिए जो भी मौका होना चाहिए, अवसर होना चाहिए, वो जिनको कम है और अभी भी वो थोड़े से पीछे है बाकी समाज से, ऐसे समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए। मेरी मतलब पढ़ाई पूरी होने के बाद, मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क हूँ, तो मास्टरी करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, तो क्यों ना मैं आदिवासी समाज में, जनजाति समुदाय में काम करूँ, इसलिए मैं इस काम में आई
0: जी। तो सुनीता जी, जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ माओवादी प्रभावित इलाकों में, तो वो विकास की राह से काफ़ी पीछे हैं, तो वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं के लिए कितनी मुश्किल था उन इलाकों में?
1: बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम जब 1990 में हम यहाँ बारसूर जो है दंतेवाड़ा जिले का एक छोटा सा गाँव, उस समय इसकी जनसंख्या केवल 3,000 थी। आज वो नगर पंचायत बन गया है, लेकिन उस समय केवल 3,000 जनसंख्या थी। इतने छोटे से गांव में जो हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, उनके जो अधिकारी, उन्होंने हमको भेजा यहाँ पर और बताया कि भाई आप यहाँ पर अस्पताल चलाने का काम डॉक्टर गोडबोले जी करेंगे और सुनीता जो है वो महिलाओं के लिए काम करेंगी। तो इस प्रकार से हमारा काम शुरू हुआ। और तो उस समय तो यहाँ तो कुछ सुविधा ही नहीं थी, मतलब पानी और बिजली का इतना बात नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बहुत ही अनास्था थी। और कोई भी एक केवल 5वीं तक का एक स्कूल था, और जो बाद में फिर एक 8वीं तक, कुछ सालों बाद 8वीं तक भी हो गया। और अस्पताल तो डॉक्टर जरूर था, लेकिन वो जो थे लोगों की यहाँ पर, मतलब कहना ऐसा था कि अरे नहीं, आश्रम के डॉक्टर भैया आ गए, बहुत अच्छा हो गया, हमको अभी दवाई अच्छा से मिलेगी। तो इसलिए आश्रम के जो वहाँ, मतलब अस्पताल था जो हमारा जो था, उसका महत्व नहीं, मतलब उसकी आवश्यकता ज्यादा महसूस होते गई
0: जी। तो सुनीता जी, जब हम बात करते हैं हमारे अबूझमार प्रदेश की और छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग की, तो वहाँ पे चिकित्सा सुविधाओं की दरकार हमेशा से रही है, और वहाँ बारिश के दिनों में हम देखें तो कई तरह की बीमारियों का खतरा होता है, मलेरिया, डेंगू, जो खतरनाक बीमारियाँ होती हैं। तो इस समय जब इस तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, तो आप लोग उन इलाकों में कैसे पहुँच पाते हैं?
1: नहीं देखिए, हमने दो प्रकार का काम किया। शुरू में तो हमने अस्पताल चलाया जहाँ पर मरीज हमारे पास आते थे, और

0: ज्यादातर जैसे जैसे मतलब लोगों में ये जानकारी हो गई कि आश्रम का अस्पताल फिर से शुरू हो गया है, तब वैसे वैसे बहुत 30-30, 35-35 किलोमीटर दूरी से भी मरीज हमारे यहाँ आते थे। अबुझमाड़ के द्वार पर बारसूर है, वहां से इंद्रावती पार करने के बाद तुरंत अबुझमाड़ शुरू हो जाता है। तो स्वाभाविक रूप से अबुझमाड़ के इलाके से बहुत सारे मरीज जो रोगी जो है हमारे पास आते थे, और इसमें ज्यादातर मरीज ये कुपोषण के और खास करके मतलब आपने जैसा कहा वो मलेरिया के, और मतलब एक कमर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ऐसा है वैसा है, ऐसे मतलब बार बार हम एक ही बीमारी को बार बार होना, जैसे मलेरिया जो बीमारी है वो बार बार होना। उस समय हमें ये मतलब टीबी के मरीज भी बहुत मिलते थे, और इसके कारण हमने वो ऐसे मरीजों को जगदलपुर ले जाना जो मरीज को हम समय पर यहाँ पर ठीक नहीं कर सकते। जैसे बच्चों को मलेरिया आता है तो उसको गुनिया के पास पहले वो लोग ले जाते हैं, मांतरिक के पास ले जाते हैं। तो ऐसे मरीज को स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ तो कोई अस्पताल जैसी मतलब बेड की वगैरह सुविधा नहीं थी, तो बाद में जब 4-5 साल के बाद एम्बुलेंस मिल गई तब हम उनको ट्रांसफर करना शुरू किया कि भाई तुरंत दौड़ाना उनको जगदलपुर। हमारी एम्बुलेंस और ड्राइवर हमेशा तैयार रहता था, पैसे की कभी कोई कभी पूछताछ हम नहीं करते थे। जैसे ही मरीज आया दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि वो ही बेचारे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चल के आते थे, और ऐसे में वो मरीज को मतलब जल्दी से जल्दी बिना ज्यादा समय गवाए पहुंचाना ये बहुत बड़ी एक चैलेंज होता था, और वो हम पूरा कर पाते थे। और जब बच्चा अच्छा होता हो जाता था तो बहुत अच्छा लगता था। तो मुख्य रूप से मतलब बारिश में तो ये कटाफ ही होता था, इसीलिए स्वाभाविक रूप से कितना भी बोलो वहां के मरीज यहाँ आना और हम वहां जाना आसान नहीं था। लेकिन जैसे धीरे धीरे हमारा भी एक अस्पताल का रूटीन बन गया और ये हो गया, और फिर छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब ये चालू हो गया अपना अस्पताल, सरकारी अस्पताल धीरे धीरे चालू हो गए, तब हमने अंदरूनी मरीजों के तक ले जाने के लिए मेडिकल कैंप शुरू किए। मतलब कम से कम 20 किलोमीटर अंदर से गाँव में मेडिकल कैंप लगाना, क्योंकि ऐसे लोगों को बारसूर आने की सुविधा ही नहीं थी, क्योंकि तब तक भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। तो ऐसे मरीजों के लिए हम लोग ज्यादातर काम करना चालू किए, और उन तक पहुंचाना मतलब जो मरीज अंदर अंदर पारा के नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे मरीजों को पहुंचने के लिए हमने मेडिकल कैंप जगह जगह शुरू किए।
1: जी सुनीता जी, अभी आपने बताया कि जब ऐसी स्थिति आती है, आपात कोई स्थिति, तो घर वाले बैगा बुनिया के चक्कर में ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि चूँकि ग्रामीण अंचल है और वहाँ पे लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं जब नहीं मिल पाती हैं तो वो अक्सर करके इस तरह के झाड़ फूँक पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो ये कितना नुकसानदायक होता है स्वास्थ्य के लिए, और किस तरह लोग इसके चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं?
0: बहुत सारा होता था उस समय तो और ज्यादा, क्योंकि मैं अब जब हमारा चर्चा हुआ वैसे कि सुविधा कुछ थी नहीं आने जाने का, तो उनके सामने और कोई चारा भी नहीं था, और शुरू से ही वो मान्यता भी थी कि भाई मांतरिक के पास जाएंगे तो। दूसरी एक बात छोटी सी जो छोटी है लेकिन बहुत ध्यान देना चाहिए कि जब भी कभी उनको बारसूर तो ठीक है, लेकिन बारसूर या जगदलपुर या रायपुर भी जाना है या दंतेवाड़ा भी जाना है ना सरकारी अस्पताल में, तो उनके लिए वो एक अलग माहौल है, उनके लिए वो भाषा अलग, वो सामने वाले दिखने वाले सब लोग अलग, जो शहरी है जिनको हम पायका बोलते हैं यहाँ की भाषा में, तो ऐसे लोगों के साथ उनको बात करने में डर लगता है। तो उनको ऐसा लगता था कि भाई वहां जाने की जगह अपन मांतरिक के पास ही जाएंगे। तो हमको ये भी काम करना पड़ा शुरू में कि ये जो भाई आप बच्चे का जान गंवा रहे हो, और ऐसे बहुत सारे बच्चों को जान गंवानी पड़ी सांप काटने में, इसमें भी वो पहले मांतरिक के पास ही जाते हैं। और मलेरिया जैसी बीमारी यहाँ खतरनाक फाल्सीपेरम मलेरिया है, मतलब किलिंग पैकल मलेरिया है, तो ऐसे मलेरिया में तो उनको तुरंत दवाई की आवश्यकता है, मांतरिक के पास जाके वो करना ठीक नहीं है। ये धीरे धीरे हमने उनके मन में बिठा दिया कि बच्चे की जान अगर समय पर आपको बचाना है तो आपको समय पर दवाई, आप उसका मलेरिया है नहीं है टेस्टिंग करिए, उसके बाद आप दवाई लेके उसके बाद आप अगर जाना है तो मांतरिक के पास जा सकते हैं। तो ये उनके मन में हमने विश्वास दिलाया कि भाई आपको दवाई बहुत आवश्यक है, तो आपको उसके लिए आना चाहिए। टीबी के लिए भी मांतरिक के पास जाके पूरा खोखला हो जाएगा पेशेंट अंदर, उसके बाद वो हमारे पास आता था, मतलब बहुत ही कठिन था उस समय।
1: जी जी जी, वाकई में इस परिदृश्य में काम कर पाना काफी कठिन होता है। जी, आपने उन सब परिस्थितियों में काम किया है। तो सुनीता जी, कार्यक्रम में

0: हम आगे बढ़ेंगे और आपसे और बातें करेंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का कोई ये गीत हो।
1: अच्छा, हाँ, मेरे पसंद का चयनित तो ये है कि जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जुबां, फिर माया का गीत है
0: जी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में पद्मश्री सुनीता गोडबोले जी की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे सुनीता गोडबोले से, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये अभुजमाड़ और बस्तर के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर कार्य करती हैं। सुनीता जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब हम आपसे जानना चाहेंगे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त होने के बारे में कि जब आपको पता चला कि आपको नामित किया गया है और आपको प्रदान किया जाएगा, आपको कैसा लगा?
1: पद्मश्री पुरस्कार को तो हमें 25 जनवरी को पता चला, 25 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय से फोन आया था। बहुत अच्छा लगा और हम इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार और हमारा दंतेवाड़ा जिला प्रशासन, इन सबके आभारी हूँ। और दक्षिण बस्तर जो क्षेत्र है, ये पूरा खाली, उसका नाम लेते ही सुकमा, दंतेवाड़ा, जो भी नाम लेते ही नक्सलवाद इतना ही लोगों के मन में उभर कर आता था। अब हम सोचते हैं कि ये सब होने के कारण लोगों में बस्तर में जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, वनोपज, जैविक खेती, इसके बारे में जो भी प्रश्न है, ये बहुत बड़े चैलेंजेस है। कृषि को लेकर भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज वहाँ के लोग भी, मतलब कृषि आधारित

0: जो उनकी जीविका है उसको अगर अच्छे से करना है तो जैविक खेती जो है वो और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए उनको ज्ञान देना बहुत जरूरी है और सरकार इस पर ध्यान दे रही है और ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब हमारे मन में मतलब उसी समय ये सभी बातें भी आई कि भाई ये केवल हमारा बड़ा मतलब हमको महत्व मिले ये बात इसमें नहीं होना चाहिए, तो बस्तर के जो प्रश्न है वो सामने आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की, ये बात ही पहले सबसे पहले मन में आई।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनीता जी, डॉक्टर रामचंद गोडबोले और आपको दोनों को संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया, तो जिस क्षेत्र में आपको प्रदान किया गया है बस्तर जैसे सुदूर अंचल में फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को देना, तो स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी घटना हुई हो कि जिस व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचना जरूरी था लेकिन वो नहीं पहुंच पाया, ऐसी कोई घटना आपके सामने हुई?
0: एकदम एकदम, हमारे पहचान के मतलब कार्यकर्ता ही है हमारे
1: जी।
0: और तो उनकी बेटी को वो ला रहे थे हमारे पास, उसकी बेटी को झटका आ रहा था और वो अबूझमाड़ मतलब नदी के उस पार, इंद्रावती के उस पार, और दो मतलब इंद्रावती उस उधर भी इंद्रावती दो तीन बार पार करके जाना पड़ता है
1: जी, जी।
0: ऐसा वो ऐसे वो मंगनार करके गांव है वहाँ का वो व्यक्ति पगनू दादा उसको हम बुलाते हैं, समय वो उनकी बेटी केवल 5 साल की थी
1: जी, जी।
0: तो वो उसको लेके वो आ रहे थे और आते आते मतलब उसको पहले तो जैसा अभी बात हुआ अपना वैसे मंत्रिक के पास ही गए थे वो
1: जी।
0: उसके बाद फिर कुछ ठीक नहीं हुआ करके फिर इधर लाएंगे भाई बारसूर आश्रम में ले जाएंगे अस्पताल में करके ला रहे थे, लाते लाते ही बीच में बारिश के दिन तूफान बह रही थी इंद्रावती और उसके में दो नाव डालना और उसको लाना ये बहुत जोखिम भरा काम था
1: जी,
0: लेकिन उन्होंने अपने बच्ची के चलते वो सब किया और इस पार आ गए बारसूर तरफ आ गए, लेकिन वहां से भी तो 5 किलोमीटर इधर आना था, लेकिन ये सब करते करते वो बच्ची का जान गए जैसा हो गया, ऐसा मतलब वो एक्चुअली वो गई ही थी लेकिन उनको लगा कि इसकी जान है शायद तो, लेकिन वो पूरी ही खत्म हो गई थी। फिर वो उसको पार करके फिर वो घर चले गए, वहां से फिर मांत्रिक के पास गए, फिर मांत्रिक ने उनको बताया कि नहीं इसका इलाज नहीं हो सकता। ये घटना जब उसने हमको जब अगले शुक्रवार बाजार लगता है यहाँ वो बाजार के दिन आया हो और रोते रोते पूरा बात बता रहा था, तब हमको इतना दुख हुआ और इतना ये लगा कि उसके बाद का जो पानी खत्म होने के बाद की जो धूप है वो धूप के दिनों में हम गांव में ये बताना जाना शुरू किया कि अरे भैया आप लोग इस प्रकार से ऐसा घर में मत रखो, आप कैसे भी करके जल्दी से जल्दी उसको लाओ और सबसे पहली बात है कि वो बच्चे को गीले कपड़े से पोंछते जाओ ताकि उसका बुखार बढ़कर मस्तिष्क तक ना जा पहुंचे और मलेरिया से बचाव मतलब केवल और केवल है ये अपना मच्छरदानी
1: जी, जी।
0: मच्छरदानी ही है तो मैं वो बचाव है मलेरिया से, गोली खाना तो बुखार आने के बाद होता है
1: जी, जी।
0: है ना, दवाई जो है वो बाद में होती है लेकिन सबसे पहला है मच्छरदानी, तो मच्छरदानी रखोगे। हम लोग कब से मच्छरदानी का प्रचार कर रहे हैं लेकिन सरकार ने जब देना चालू किया तो कुछ लोगों के ध्यान में आया, कुछ लोग करते हैं लेकिन फिर भी अभी भी अंदरूनी इसमें उसका रख रखाव ठीक से रखना जानते नहीं है, फिर वो 2-4 महीना उपयोग करते हैं उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, लेकिन ये एक झकझोरने वाली ही घटना थी
1: जी,
0: कि इतनी छोटे बच्ची का उन्होंने प्रयास किया, ऐसा नहीं कि वो घर में बैठे रहे लेकिन थोड़ा देर से प्रयास होने के कारण और बारिश के कारण उनको वो और देर हुई और उसके कारण वो अपने बच्ची के जान से हाथ धोना पड़ा
1: जी,
0: और
1: जी।
0: उसके लिए वो आज भी पछताते हैं
1: जी जी जी। इसीलिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है और रामचंद गोडबोले जी और आपने मिलकर जो कार्य किया है ये काफ़ी सराहनीय है। तो सुनीता जी कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपसे चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक और गीत हम सुने।
0: गरजत बरसत सावन आयो रे, सुमन कल्याणपुर जी का है बरसात की रात का गाना।
1: जी जी जी, तो आइए सुनते हैं सुनीता जी की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे सुनीता गोडबोले से, जिन्हें हाल ही में 2026 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से हैं और बारसूर में रहती हैं। वहीं इन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कई कार्य किए हैं, दुर्गम इलाकों में इन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई हैं। तो सुनीता जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सुनीता जी, कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले वर्षों में आप वहाँ रहकर अभी जो चिकित्सा सुविधाओं और चिकित्सा से संबंधित कौन कौन से सेवा कार्य आपने और निर्धारित किए हैं?
1: हाँ, हम लोग मेडिकल कैंप हमारे अंदर अंदर गांव में, जहाँ पर कुछ पहुँच नहीं है अभी किसी की और उन लोग आ नहीं सकते मरीज लोग इस प्रकार से, तो वहाँ पर हम करते हैं। केवल मेडिकल कैंप नहीं लेना है, उसका फॉलोअप भी लेना है कि कौन से मरीज को कमजोरी के लिए दवा देना है। तो डॉक्टर साहब 3 महीने की दवा लिख के देते हैं, हम 3 महीने की दवा तो एक साथ नहीं दे पाते क्योंकि उनकी उतनी समझ है नहीं है कितना खाएंगे ये सब, तो उनको 15 दिन की पहले दवा देते हैं, उसका फॉलोअप लेते हैं। फिर उसके साथ साथ मतलब फॉलोअप का ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि जो रेफरल मरीज है, मतलब जो मरीज जिसको सुना ही नहीं दे रहा है, या किसी को कोई महिला है उसको कोई पीसीओडी या गायनेक कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे मरीजों को हम जगदलपुर ले जाते हैं। आवश्यकता पड़े तो कभी जब पास में है तो छोटा बीमारी है तो जनतावाड़ा भी ले जाते हैं। तो ये रेफरल का सर्विस हो गया, ये मेडिकल कैंप के बारे में। और दूसरा है, एक जो मुख्य हमारा अभी पिन पॉइंट प्रोग्राम है वो है मास, मतलब माल न्यूट्रिशन एनीमिया एलिविएशन स्कीम, यानी आपको कुपोषण और रक्ताल्पता खून की कमी, ये दो के बारे में, क्योंकि सभी उनकी जो बीमारी की जो जड़ है वो आज इतने मतलब कम से कम 20-22 साल के बाद हमको ध्यान में आया, यानी हमने अध्ययन करके ये निश्चित किया कि भाई ये खून की कमी ही उनके जड़ में है। तो ये खून की कमी अगर कम करना है तो उसके लिए हमको सुपोषित मतलब पोषक आहार देना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग 3 साल से 13 साल के बच्चे का, जिसका हीमोग्लोबिन कम है 8 से नीचे है, ऐसे बच्चों को हम चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उनको हम 6 महीना का पोषक आहार देते हैं ताकि उसके

0: साथ साथ हम मल्टीविटामिन, आयरन, उनको मलेरिया ना हो इसलिए मलेरिया की दवाई तो सबसे पहले पेडियाट्रिशियन को दिखाना, उनकी जो ट्रीटमेंट ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी वो सब क्या उसका उपयोग करना, उसके बाद फिर ये मल्टीविटामिन और ये सब चालू करना, पोषक आहार चालू करना, और उसके साथ साथ फिर उनको उनका वजन लेना और हर महीना उनका खून जांच करना। इसी से हमको पता चला। फिर इसके साथ साथ हमने दाल और तेल भी बढ़ाया ताकि वो दोपहर का भोजन में दाल खाए ताकि प्रोटीन उनको जाए, क्योंकि प्रोटीन की कमी है भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, इसके कारण शरीर में मजबूती नहीं है और वो जो जब वो 40 के हो जाते हैं तो वो अलग अलग बीमारियों की बीमारियां नहीं मतलब दर्द का, शरीर दर्द होता है, सिर दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, ऐसी शिकायतें करते हैं। तो उसका कारण मूलतः कैल्शियम और प्रोटीन की कमी। तो ये सभी बातें हम उनको देते हैं और उसका पूरा लाभ होता है। हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे रिजल्ट है कि जिसका हीमोग्लोबिन 7 था, 6 था, नॉन रिकॉर्डेबल था, ऐसे हीमोग्लोबिन 12 तक गया है। तो ये एक प्रोग्राम हो गया। अच्छा, इससे भी और एक बेसिक कार्यक्रम ऐसा है कि 6वीं से आकर 11वीं तक के बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बिठा के उनको अपने शरीर को जानो, यानी शरीर ही आपका महत्वपूर्ण है, शरीर ही सभी इसका साधन है, उसको आप अगर कुछ काम करना भी चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो या IAS बनना चाहते हो या कुछ भी बनना चाहते हो तो पहले आपका शरीर ही अच्छा चाहिए। तो इसलिए आपके शरीर को जानो और उसको स्वस्थ रखो, अपने घर में जो कुपोषण है, रक्ताल्पता है, खून की कमी है, उसको पहचानो। वो कैसे पहचानना आदि बातें हम बताते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर गुटखा, गुड़ाखू और ये नशाखोरी भी बहुत है और इसकी लत बच्चों में ना लगे, बच्चे उस वहां से दूर रहे, ये सब समझाने के लिए हम ये कार्यक्रम चलाते हैं स्कूलों में। ये हमारे 3 मुख्य कार्यक्रम अभी चल रहे हैं।
1: जी जी जी जी सुनीता जी, बहुत अच्छे कार्यक्रम है और इनसे ज़रूर वहाँ की आम जनता लाभ ले रही है और आगे भी लाभ लेती रहेगी। और आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक भी हुए हैं और जो अभी प्रयास आप कर रहे हैं आगे भी सार्थक होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज आपने हमें समय दिया और अपनी बातें हमें बताई और आप हमारे साथ कार्यक्रम में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद रायपुर आकाशवाणी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमारे विचार हमारे मन की बात बताने के लिए मतलब समय दिया, धन्यवाद।
1: इनसे मिले कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम इनसे मिलिए। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

नमस्कार। कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक में मैं गोपेश आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज 5 जून है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व इस प्रकृति से है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, परंतु इस वर्ष बढ़ती गर्मी ने हम सभी को व्यथित और चिंतित भी किया है। कार्यक्रम गुंजन के आज के सफर में हम पर्यावरण संरक्षण और इस कड़कड़ाती धूप में अपनी सेहत की सुरक्षा पर चर्चा करेंगे और साथ में सुनेंगे कुछ सुंदर

और संदेशात्मक गीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं जसपाल सिंह के गाए इस गीत से। फिल्म का नाम है गीत गाता चल।

श्रोताओं, आज जब हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं तो हमें अपने आसपास के वातावरण को देखना होगा। इस वर्ष हमारे आसपास के क्षेत्रों में भी तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण वनों की कटाई और कंक्रीट का बढ़ता जाल है। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद निरंतर चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हम अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा। पर्यावरण दिवस केवल एक दिन का औपचारिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह हर दिन प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए सुनते हैं फिल्म आराधना का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: अरे बाबा है,
1: तुमको मुझसे प्यार है,
0: है? ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना।
2: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम गुंजन में। साथियों, बढ़ती गर्मी के इस मौसम में सबसे गंभीर समस्या उत्पन्न होती है जल संकट की। हमारे जल स्रोत जैसे कुएं, तालाब और नदियां सूखने की कगार पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम पानी की एक एक बूंद का मूल्य समझें, अपने घरों में जल का अपव्यय रोकें, साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग पर ध्यान दें। साथियों, जितना ज़्यादा जल को संचित करने के उपाय करेंगे और घरों में पानी को बचाने की कोशिश करेंगे, उसे व्यर्थ बहाने के बजाय पौधे में डालेंगे, इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा। जब पानी बचेगा तभी यह धरती हरी भरी रहेगी। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सागर का गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
4: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
3: अच्छा, वो कैसे?
4: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर।

0: पुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
0: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का एसटीडी कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: साथियों, पर्यावरण के साथ साथ इस भीषण गर्मी में हमारी पहली प्राथमिकता अपनी सेहत की रक्षा करना भी है। इन दिनों चलने वाली तीव्र लू और कड़कड़ाती धूप के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। वर्तमान समय में डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि इस मौसम में भोजन और पेय पदार्थ को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। दोपहर के समय में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आगे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में फिल्म शोर का गीत।

0: राम राम हो विष्णु भैया।
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद दे फटफट फटफट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं। हाँ। बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोह बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज हर नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ
1: तहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्स पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ अभी तो शुरू है कि सा है।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

0: सखियों, हर दिन की दिनचर्या में आपका अपना साथी आकाशवाणी अंबिकापुर और उस पर भी आप बहनों के लिए खास आपका कार्यक्रम घर आंगन आपको बुलाता है। सप्ताह में पूरे चार दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को दोपहर 1:10 से 1:40 तक पूरे 30 मिनट का ये सफर हम तय करते हैं सखियों, आपसे ढेर सारी बातचीत, आपके पसंद के गीत, आपके मेल्स और आपके पत्रों के साथ। तो जुड़े रहिए हमसे और सुनते रहिए आपका चहेता कार्यक्रम घर आंगन।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना यशुदास की आवाज में फिल्म चित्तौर का गीत। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं,

0: के साथ, तो जुड़े रहिए हमसे और सुनते रहिए आपका चहेता कार्यक्रम घर आंगन।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना यशुदास की आवाज में फिल्म चित्तौर का गीत। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में बढ़ता प्रदूषण, वनों की कटाई और शहरीकरण कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए घातक है। इसी कारण वातावरण का तापमान भी निरंतर बढ़ रहा है। चिकित्सक इस प्रकार के मौसम में चाय और कॉफ़ी जैसे कैफीन युक्त पेय पदार्थों से बचने की सलाह देते हैं। इनके स्थान पर हमारे पारंपरिक और घरेलू पेय जैसे ताज़ा छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी और आम का पना अत्यंत लाभकारी है। यह न केवल शरीर को भीतर से ठंडा रखते हैं बल्कि कहीं न कहीं लू से भी बचाते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी किसी आवश्यक कार्य से घर से बाहर निकलें तो खाली पेट न निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर और सूती वस्त्रों से अपने सिर व चेहरे को ढक कर ही बाहर जाएं। सजगता ही इस मौसम में हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। कार्यक्रम में बातों का दौर आगे भी जारी रहेगा, उससे पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म कुदरत का गीत।

0: सुनत हस?
1: हाँ।
0: सोचत हो काहे नहीं अपन काम धंधा ला बढ़ाए लो।
1: तो रोकिस कौन हवे?
0: अरे रोकिस तो कोई नहीं है, बाकी समझ नहीं आते कि केकर ले सहायता मांगो।
1: मोर से?
0: तोर से? लेग तो बता फिर।
1: आकाशवाणी हवे ना, मैं सुनी हूँ उकर नेटवर्क देश भर में फैलिस हवे।
0: पर उकर ले मोर का फायदा?
1: दिखा फायदा हवे, जौन नगरी चाहा विज्ञापन के सहायता ले उपभोक्ता तक पहुँच जावा।
0: ता अब एहू घलो बताए दे, आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: अड़बड़ आसान हवे जी, मैं बता दूं। नंबर ला लिखा 870-001-4242।
0: आहा, 870-001-4242।
1: हाँ।
0: चल अजेज फोन ला लगा थू, 870-001-4242 पर।
2: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुंजन में। श्रोताओं, इस तीव्र गर्मी में केवल हम मनुष्य ही व्याकुल नहीं होते, बल्कि हमारे आसपास के मूक पशु पक्षी भी इस प्रचंड ताप से त्रस्त रहते हैं। वे अपनी प्यास बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते। कार्यक्रम गुंजन के माध्यम से हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि अपने घरों की छतों पर, बालकनी में या आंगन के किसी छांव वाले स्थान पर मिट्टी के बर्तनों में स्वच्छ पानी अवश्य रखें। आपकी इस छोटी सी संवेदनशीलता से किसी बेजुबान पक्षी की जान बच सकती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है अनजाना।

साथियों, कार्यक्रम गुंजन में आज हम पर्यावरण सुरक्षा और अपनी सेहत की रक्षा दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। साथियों, हमारे वेदों में कहा गया है, धरती हमारी माता है। चिपको आंदोलन से लेकर स्वच्छ भारत अभियान तक भारत ने हमेशा पर्यावरण बचाने की कोशिश की है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक पेड़ माँ के नाम, प्लास्टिक बैन, ये सभी उस दिशा में कदम हैं जो हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के कारगर उपाय हो सकते हैं। परंतु सरकार के साथ साथ हर कार्य में, हर कार्यक्रम में हम सभी नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं हो पाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म लोफर का गीत।

साथियों, आज का दिन यानी 5 जून सिर्फ पौधा लगाकर फोटो डालने का दिवस नहीं है, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा और इसके उपाय हमें रोज अपने व्यवहार में लाने होंगे। इसके लिए सबसे आवश्यक है, हर विशेष अवसर पर यदि प्रत्येक व्यक्ति पेड़ लगाए तो कहीं न कहीं हरियाली पुनः वापस आ सकती है। पानी की हर बूंद कीमती होती है, इसलिए कोशिश करें कि दैनिक जीवन में हमेशा पानी की बचत करें, प्लास्टिक से दूरी बनाएं, ऊर्जा का भी संरक्षण करें। कचरा को कचरा न समझते हुए यदि हम संसाधन समझें, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग रखें और इन्हें फिर से रिसाइकिल करके उपयोगी रूप में ले आएं, तो कहीं न कहीं यह भी पर्यावरण की रक्षा का एक प्रमुख साधन और उपाय बन सकता है। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं फिल्म अभिमान का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

इन्हीं बातों और गीतों के साथ कार्यक्रम गुंजन का आज का अंक समाप्त होता है। कार्यक्रम के आज के अंक से मुझे यानी अपने रेडियो साथी गोपेश को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।

अभी आप सुन रहे थे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री आज पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को करेंगे सम्मानित। और मानसून केरलम पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 12 जून तक पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल रमेन डे का आज लोकभवन और नया रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण करेंगे। वहीं वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रायपुर के राजीव स्मृति वन में प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र से होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा आज सांकरा पाटन में एक दिवसीय खेत बचाओ अभियान कार्यशाला और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उद्यानिकी मंत्री रामविचार नेताम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत किसानों को मृदा संरक्षण, प्राकृतिक खेती और जैविक खाद के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। कृषि वैज्ञानिक आधुनिक कृषि तकनीकों तथा फसलों में कीट और रोग प्रबंधन के उपायों से भी किसानों को अवगत कराएंगे। कार्यक्रम में कृषि उपयोगी सामग्री का वितरण भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश की शराब फैक्ट्रियों से निकल रहे जहरीले पानी से प्रदूषित हो रही नदियों को लेकर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दो अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट कमिश्नर

प्रदेश की तीन शराब डिस्टिलरी यूनिट्स का संयुक्त निरीक्षण करेंगे और आगामी 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले पंजीकृत श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को सम्मानित करेंगे। योजना के तहत प्रत्येक मेधावी छात्र को 1,00,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 1,00,000 रूपये का विशेष अनुदान देने का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 28वीं किश्त जारी करते हुए प्रदेश की 68,54,000 महिलाओं के बैंक खातों में 642,27,77,950 रुपए की राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। महतारी वंदन योजना इस दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल के रूप में सामने आई है। दक्षिण पश्चिम मानसून कल 4 जून को केरलम पहुंच चुका है। इसके 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में नमी बढ़ी है और आसपास में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली गिरफ्तारी की है। ईडी ने अभनपुर निवासी कारोबारी जयप्रकाश गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने 3 जून को आरोपी को विशेष न्यायालय रायपुर में पेश किया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री आज पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को करेंगे सम्मानित। और मानसून केरलम पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 12 जून तक पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही औसत वर्षा 0.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तापमान सूचना के बाद पेश है कार्यक्रम विवरण।

दिन के 11:05 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। दोपहर 12:00 हम आपको सुनवाएंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम घर गोसाइन में दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे सामयिक चर्चा पर्यावरण दिवस पर। साथ ही चर्चा होगी ऊर्जा संरक्षण विषय पर भी। दोपहर 1:40 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ईमेल की गूंज। गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। कार्यक्रम युवाणी के अंतर्गत आज आप सुन सकेंगे हेलो फ्रेंड्स

शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी का प्रसारण समय होगा शाम 6:30। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। कार्यक्रम में सामयिक चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, विश्व पर्यावरण दिवस, ई वेस्ट तकनीक से बढ़ता पर्यावरण संकट। साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे बीज उपचार का महत्व, रोग मुक्त खेती, कृषि स्टार्टअप्स। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकेंगे कुछ लोकगीत, मंडी भाव, मौसम का जानकारी और मौसम आधारित कृषि परामर्श। सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश हम आपको सुनवाएंगे रात 8:00। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल की गूंज तथा रात 10:00 आप सुनेंगे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम राग प्रधान। साथियों, ये थी जानकारी हमारे आज के प्रमुख शेष कार्यक्रमों की। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:03 हुए हैं। प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म गदर 2 के इस गीत से। स्वर हैं विशाल शेखर, नीति मोहन और शहनाज के। गीतकार हैं सईद कादरी और संगीतकार हैं मिथुन।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म किस्मत कनेक्शन से। स्वर हैं मोहित चौहान और श्रेया घोषाल के। गीतकार हैं सईद कादरी और संगीतकार हैं प्रीतम।

0: पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: मीडियम वेब और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म फाइटर से। स्वर हैं अरिजीत सिंह, जोनिता गांधी और विशाल शेखर के। इस गीत को लिखा है कुमार ने और धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, आज सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रमेंद्र कुमार।

राहत फतेह अली खां और तुलसी कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म डेंजरस इश्क का गीत। गीतकार थे शब्बीर अहमद और संगीतकार थे हिमेश रेशमिया। कार्यक्रम नए तराने में आइए सुनते हैं जुबीन नौटियाल की आवाज़ में मोहम्मद इरफान का लिखा गीत। संगीतकार हैं तनिष्क वागची। फिल्म का नाम है मशीन।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07742306000।
2: कार्यक्रम नए तराने में आइए सुनते हैं फिल्म वेदा का गीत श्रेया घोषाल और अमाल मलिक की आवाजों में।

आर आर आर, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत अमित त्रिवेदी की आवाज़ में। गीतकार हैं रिया मुखर्जी और संगीतकार हैं MM क्रीम।

कार्यक्रम नए तराने के अंत में आइए सुनते हैं अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में फिल्म तमाशा का गीत। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं AR रहमान।

अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म तमाशा का गीत। इसी के साथ कार्यक्रम नए तराने अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से अल्पकालिक उधार दर या रेपो दर को 5.25% पर तटस्थ बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%.
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। बैंक ने अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीयों द्वारा इक्विटी उपकरणों में निवेश की सीमा भी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम श्री मोदी का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका

0: अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये अत्याधुनिक एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार प्रणालियों और स्वचालित मौसम स्टेशनों के विस्तारित नेटवर्क के साथ मौसम संबंधी प्रेक्षणों को एकीकृत करेगा, जिससे वास्तविक समय में मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान की सटीकता और पूर्व चेतावनी क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलू ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी समाचार हम अभी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री का सजीव प्रसारण।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पत्रों और ईमेल पर आधारित आपके अपने कार्यक्रम चिट्ठी पत्री लाइव में। मैं हूं आपकी रेडियो साथी प्रियंका। श्रोताओं, आपके स्नेह से भरे पत्र, सुझाव और शुभकामनाएं ही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी पूंजी हैं। इन्हीं पत्रों के माध्यम से हम आपसे जुड़ते हैं और आपके मन की बात जानने का अवसर पाते हैं। आज आपके पत्रों और ईमेल पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रमेंद्र कुमार जी। प्रमेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद प्रियंका जी, और साथ ही साथ चिट्ठी पत्री सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं। और देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ये कार्यक्रम जो है हमारे श्रोताओं के सुझावों, उनकी समीक्षा, उनके प्रशंसा, उनकी बातों का है, और ढेर सारे सुझाव, समीक्षा, ढेर सारे ईमेल पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। तो शुरू करते हैं पत्रों का सिलसिला। और देखिए, आज एक विशेष दिन भी है, विश्व पर्यावरण दिवस है, तो विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं पत्रों का सिलसिला। तो सबसे पहला पत्र, ईमेल आज आप किन का ले रही हैं
0: जी? ये पहला ईमेल पत्र है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा हाल मुकाम पेंड्रा रोड से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा एवं वान्या सिंगरौल का। ये लिखते हैं, चिट्ठी पत्री कार्यक्रम श्रोताओं के विचार, सुझाव और प्रतिक्रियाओं को मंच प्रदान करने वाला अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम है। वर्तमान में इसका प्रसारण लाइव स्वरूप में किया जा रहा है, जो सराहनीय है। विनम्र सुझाव है कि कार्यक्रम के दौरान प्राप्त होने वाले लाइव ईमेल और संदेशों को भी अधिक से अधिक शामिल किया जाए। इससे श्रोताओं की सहभागिता बढ़ेगी और कार्यक्रम का लाइव स्वरूप और अधिक सार्थक बनेगा। साथ ही कार्यक्रम के विस्तारित समय में गीतों के साथ साथ श्रोताओं

0: की लाइव प्रतिक्रियाओं को भी पर्याप्त स्थान दिया जाए, ताकि कार्यक्रम का मूल उद्देश्य और प्रभाव बना रहे। इतना लिखते हुए इन्होंने पत्र का समापन किया है।
1: जी चंदूलाल सिंह रावल जी और आपके सभी मित्रगण, सभी परिजन, आप सभी को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से हार्दिक नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत। आपने चिट्ठी पत्री कार्यक्रम के प्रति जो लगाव और सजग प्रतिक्रिया लिख भेजी है वो स्वागत योग्य है और हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम की उपयोगिता, श्रोताओं की भागीदारी, लाइव स्वरूप को लेकर आपने जो विचार साझा किए हैं उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका सुझाव बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रम के दौरान जो हमें ईमेल प्राप्त होते हैं, संदेश मिलते हैं, उनको अधिक से अधिक स्थान दिया जाए। लेकिन बेशक ये कार्यक्रम जो है एक सजीव कार्यक्रम है, लेकिन मैं श्रोताओं से गुजारिश करूंगा कि आप यथासंभव जो अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो मेल होते हैं, संदेश होते हैं, उसे कार्यक्रम के प्रारंभ होने से कम एक घंटे पहले हमें भेज दें, तो इससे हमें सहूलियत होती है कार्यक्रम के रूपरेखा को तय करने में। कार्यक्रम के, क्योंकि हमारे पास सीमित अवधि होते हैं और उसी में हमें कार्यक्रम को कर समेटना होता है, तो यदि आप अपनी प्रतिक्रियाएं कम से कम एक घंटे पहले भेज देंगे तो हमारे लिए सहूलियत होगी और हम कार्यक्रम को बड़े ही सुचारू रूप से, बड़े ही व्यवस्थित रूप से कर पाएंगे। और बेशक हम अधिक से अधिक पत्रों को, ईमेल को जगह देने की कोशिश करते हैं और इसमें हम शिकायत का मौका नहीं देते अपने श्रोताओं को। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपके सुझावों और अनुभवों को गंभीरता से लेते हुए और कार्यक्रम की गुणवत्ता में जो सुधार की बात आपने की है उसको अवश्य ध्यान रखेंगे और बस यही चाहेंगे कि आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, अपने विचार भेजते रहिए। आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रियंका जी, अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: ये अगला पत्र है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से।
1: जी
0: रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल का। ये लिखते हैं, सप्रेम नमस्कार और आकाशवाणी 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई। पिछले लगभग 45 वर्षों से ये रेडियो से जुड़े हैं और इस सफर में ज्ञान, मनोरंजन तथा देश भर के अनेक आत्मीय मित्रों का साथ मिला है। आकाशवाणी इनके लिए केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि यादों, सीख और अपनत्व का अनमोल खजाना है। इसने हमेशा लोगों को जोड़ा है, संस्कृतियों को संजोया है और हर दिल तक अपनी पहचान बनाई है। और इसी के साथ इन्होंने पत्र का समापन किया है।
1: जी रवि कुमार राहुल जी, आपके सभी मित्रगण, परिजन, आप सभी को सबसे पहले तो हमारी ओर से सप्रेम नमस्कार। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आपने जो भावपूर्ण संदेश लिख भेजा है वह दिलों को छूने वाला है। 45 वर्षों का आपका रेडियो से जुड़ाव वास्तव में प्रेरणादायक है। आपकी बातों से महसूस होता है कि रेडियो आपके लिए केवल एक माध्यम नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न साथी रहा है। आपने जिस आत्मीयता से आकाशवाणी की भूमिका, उसके कार्यक्रमों, उससे जुड़ाव के अनुभव को साझा किया है उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। आपकी सुंदर प्रतिक्रियाएं, पंक्तियां हर रेडियो प्रेमी की भावना को शब्द देती हैं। आप जैसे समर्पित श्रोताओं का स्नेह और विश्वास ही आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत है, तो हम यही गुजारिश करेंगे कि इसी तरह जुड़े रहिए, सुनते रहिए और अपने विचार हम तक पहुंचाते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी ये अगला पत्र है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से। पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र एवं रौनक सेन की ओर से ये लिखते हैं, आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी कार्यक्रम सदैव उत्कृष्ट, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगते हैं। पिछले सप्ताह व्यस्तता के कारण चिट्ठी पत्री के लिए ईमेल नहीं भेज सके, लेकिन 22 मई को तरुण कुमार जी एवं कल्पना सिन्हा जी की शानदार प्रस्तुति तथा 29 मई को कार्यक्रम चिट्ठी पत्री के लिए आपको और पौलमी जी को इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। और ये लिखते हैं कि इसके साथ ही आपकी बात, आपके गीत, गांव का गीत, आपकी पसंद एवं ईमेल की गूंज जैसे कार्यक्रम पूरे सप्ताह इनका उत्साह बढ़ाते रहे। सभी उद्घोषक साथियों को समर्पित और प्रभावशाली प्रस्तुतियों के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया है इन्होंने।
1: जी पवन कुमार सेन जी और आपके सभी परिजन मित्रगणों को।

0: सबसे पहले तो हमारी ओर से स्नेहिल नमस्कार। आपका ये जो ईमेल है बड़ा ही प्रेम और अपनापन से भरा हुआ है और आपके शब्दों में आकाशवाणी और उसके कार्यक्रमों के प्रति जो आत्मीयता झलक रही है हम सभी के लिए ये सम्मान से कम नहीं है। जानकर प्रसन्नता हुई कि चिट्ठी पत्री आपकी बात, आपके गीत, गाँव कर गीत, आपकी पसंद और ईमेल की गूंज जैसे कार्यक्रम पूरे सप्ताह आपके मनोबल को बढ़ाने में सहायक रहे। हमारे प्रस्तुताओं के प्रति आपने जो स्नेहपूर्ण विचार लिख भेजे हैं निश्चित रूप से हमें और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे। पिछले सप्ताह ईमेल न भेज पाने का आपका जो सहज उल्लेख है ये हम सभी को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा है और श्रोताओं का यही अपनापन है जो हमें कार्यक्रमों की, जो हमारे कार्यक्रमों की असली पहचान है। आप और आपके पूरे परिवार को हार्दिक धन्यवाद। इसी तरह सुनते रहिए, लिखते रहिए और अपना स्नेह हम पर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद और अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
1: जी, ये अगला पत्र हमें मिला है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से। रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, कीरत राय वाधवानी, प्रदीप कुमार साहू, शरद कुमार डोडवानी और समस्त माखीजा परिवार का। आप लिखते हैं कि हमारा पूरा परिवार आकाशवाणी अंबिकापुर के प्रसारण नियमित रूप से सुनता है।
0: जी।
1: 28 मई के विचार बिंदु में आत्मस्वीकृति विषय पर प्रस्तुत आलेख तथा 29 मई के चयन कार्यक्रम में रूह शब्द पर पौलोमी जी द्वारा की गई आत्मीय चर्चा बहुत प्रेरणादायक लगी। 30 एवं 31 मई के गुंजन कार्यक्रमों में पत्रकारिता दिवस जिसे मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था और गोपेश जी द्वारा प्रस्तुत विश्व तंबाकू निषेध दिवस और जनगणना जैसे विषयों पर दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक रही। वहीं 1 जून के परिक्रमा विविधा कार्यक्रम में गंगा दशहरा, बकरीद, नौतप्पा तथा तंबाकू निषेध विषय पर प्रस्तुत जानकारी और अंजनी कुमार पांडे द्वारा विशेषज्ञ वार्ता अत्यंत उपयोगी एवं स्वास्थ्यवर्धक लगी। सभी प्रस्तुतकर्ताओं एवं आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार को इतनी सुंदर, सार्थक और रोचक प्रस्तुतियों के लिए इन्होंने हार्दिक बधाई दी है।
0: जी, रामचंद माखीजा जी, आपके सभी मित्रगण, सभी परिजनों को सबसे पहले तो नमस्कार, वंदे मातरम। बड़ा ही विस्तृत और भावनाओं से भरा संदेश, या मैं कहूँ कि भरे हुए कई संदेश आपने लिख भेजे हैं। हमेशा की तरह अमूमन हर दिन आपके एक ईमेल हमें प्राप्त हो जाते हैं और हमारे कार्यक्रमों को आपने इतने ध्यान से सुना है और उनमें प्रस्तुत विचारों, गीतों, जानकारियों पर आपने जो विचार साझा किया है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप हमारे कार्यक्रमों से बड़े ही गहरे रूप से जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यक्रमों को ध्यान से सुनते हैं। हमें प्रसन्नता है कि चयन, विचार बिंदु, गुंजन और परिक्रमा विविधा जैसे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रमों के विषय, प्रस्तुतकर्ताओं की शैली, उनमें निहित संदेशों को आप जिस सूक्ष्म दृष्टि से आपने परखा है, सराहा है और विशेष रूप से आत्मस्वीकृति, विश्व तंबाकू निषेध दिवस और स्वास्थ्य जागरूकता जैसे विषयों पर आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हमारे लिए उत्साहवर्धक है। आपके पूरे परिवार का यह स्नेह और निरंतर सहयोग हमें और भी बेहतर कार्यक्रम करने के लिए प्रेरणा देता है। तो हम यही चाहेंगे कि आप इसी तरह हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, अपने विचार भेजते रहिए और हम सभी का उत्साहवर्धन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इन पत्रों के लिए। और प्रियंका जी, अब समय हो चला है कि कुछ गीत संगीत भी सुन लिया जाए।
1: जी बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं 100 डेज फिल्म का ये गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम चिट्ठी पत्री लाइव में। अगला पत्र है सुपर स्टार रेडियो श्रोता संघ सारस ताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। प्रेम साय राजवाड़ी, सोमार साय, मीर साय, श्री भगत हेमंत कुमार राम खेलावन सिंह पैकरा, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, फूलसर कोरबा से नयनदास दीवान। आप लिखते हैं चिट्ठी पत्री प्रस्तुत करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी अंबिकापुर से सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। दिनांक 29 मई को चिट्ठी पत्री शानदार लगा, इसके लिए पौलमी जी और आपको इन्होंने बधाई दी है। और दिनांक 30 मई को कार्यक्रम गुंजन अच्छा लगा, जिसे मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 1 जून को आपकी बात आपके गीत में पौलमी जी से बातचीत और बजाए गए गीत को आपने सराहा है। और हर रोज़ सभी कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, इसके लिए कल्पना शक्ति, पूनम, प्रियंका, रैना, मृदुल गुप्त, रितिका, स्वाति, चरणजीत, हेमलता, पौलमी, खुशबू, धरती, जयमाला, अक्षय, तरुण, मृदुल वर्मा, गोपेश, पद्मनाभ, विजय, रिजवान, राजीव, संजय, मनवानी, करण, विक्की, इन सभी का प्रस्तुत करने का अंदाज बहुत ही अच्छा लगता है और सभी एक से बढ़कर एक गीत चुन कर लाते हैं, इसके लिए आपने सभी को बधाई दी है। साथ ही आप लिखते हैं कि आपको इंस्टा फरमाइज भी पसंद आ रहा है। आपने सभी को 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है और सभी लोग एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे और हमें शुद्ध हवा मिल सके पेड़ से, जिससे आने वाले समय में एसी, कूलर, पंखा का इस्तेमाल का सहारा ना लेना पड़े। इतना लिखकर आपने पत्र का समापन किया है।
1: जी, रेडियो सुपर स्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा से हमारे साथी प्रेम साय राजवाड़े जी, आपके सभी मित्रगण और आपके सभी परिजनों को हमारी ओर से स्नेह भरा नमस्कार। बड़ा ही आत्मीय संदेश आपने लिख भेजा है और हमारे कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनना, इतनी बारीकी से अपनी प्रतिक्रियाएँ भेजना, ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। हमें प्रसन्नता है कि चिट्ठी पत्री, गुंजन, आपकी बात आपके गीत तथा इंस्टा फरमाइश जैसे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं। विशेष रूप से आपकी बात आपके गीत में आपने हमारे साथी पौलमी जी से जो पहली बार बातचीत का अनुभव साझा किया है, आपका यह अनुभव सुखद रहा, ये जानकर हम सभी को अच्छा लगा। श्रोताओं के साथ सीधा संवाद ही हमारे इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता है, महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम इसीलिए है। हमारे सभी प्रस्तोताओं के प्रति आपने जो स्नेह और सम्मान व्यक्त किया है, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपके शब्द निश्चित रूप से हमारे पूरी टीम का उत्साह बढ़ाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपका दिया गया संदेश भी अत्यंत प्रेरणादायक है। आइए हम सब मिलकर एक पौधा अवश्य लगाएँ और प्रकृति को सुरक्षित रखने का संकल्प लें। प्रेम साय राजवाड़े जी, आपका प्रेम और विश्वास ही हम सभी की बड़ी सबसे बड़ी पूंजी है, तो हम यही चाहेंगे कि आप सुनते रहिए, जुड़े रहिए और अपने विचार इसी तरह हमें भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए। और प्रियंका जी, अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: जी, ये अगला पत्र है सत्यम क्लब फुलकोना प्रेम नगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, ऐश्वर्या, प्रीतम और मनोज यादव का।
1: जी,
0: इन्होंने सभी प्रस्तुतकर्ताओं को सादर अभिवादन किया है और 30 मई के आराम

0: साधना विचार बिंदु नमस्कार सरगुजा, डॉक्टर की सलाह बातों बातों में और नए तराने कार्यक्रम को पसंद किया है, जिसके लिए इन्होंने मुझे बधाई दी है। और भजन संध्या साथ ही इंस्टा फरमाइश की सुंदर प्रस्तुति के लिए मृदुल वर्मा जी को इन्होंने धन्यवाद किया है। 31 मई को पूर्व कार्यक्रम अधिशासी लखन लाय भौरे जी से परमेंद्र जी की बातचीत तथा गुंजन में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर चर्चा बहुत ज्ञानवर्धक लगी। कानून की बात कार्यक्रम भी पसंद आया। 3 जून के गुंजन में विश्व साइकिल दिवस और पर्यावरण विषय पर दी गई जानकारी के लिए स्वाति मिश्रा जी को धन्यवाद किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी से इन्होंने निवेदन किया है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। इतना लिखकर पत्र का समापन किया है।
1: जी प्रियंका जी, देखिए सत्यम क्लब फुलकोना से हमारे साथी अरविंद कुमार यादव जी हमारे नियमित श्रोता हैं और आज भी हमेशा की तरह विस्तृत और बड़ा ही आत्मीय संदेश लिख भेजा है। तो सबसे पहले तो आप सभी श्रोताओं को सत्यम फुल प्रेम सा अरविंद कुमार यादव जी और आपके सभी मित्रगण, आपके सभी परिजनों को मैं स्वागत करता हूँ कार्यक्रम में और आप सभी को नमस्कार करता हूँ। हमारे विभिन्न कार्यक्रमों को आपने बड़े ही ध्यान से सुना है और उसके बारे में अपने विचार साझा किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें प्रसन्नता हुई कि आप आराधना विचार बिंदु नमस्कार सरगुजा बातों बातों में नए तराने गुंजन भजन संध्या इंस्टा फरमाइश कानून की बात जैसे सभी कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं और इन कार्यक्रमों में दी गई जानकारियों और गीत संगीत के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही बड़ा एक पुरस्कार की तरह है। आपने पूर्व हमारे जो कार्यक्रम अधिशासी सहायक निदेशक लखनलाल भौर जी के साथ विशेष बातचीत का उल्लेख किया और ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रसारित किया गया, जिसे हमारे केंद्र से भी अनुप्रसारित किया गया था और आपने इस कार्यक्रम को सराहा, ये कार्यक्रम आपको पसंद आई, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ये आपके शब्द हम हमारे इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जो रायपुर केंद्र से हैं उन तक अवश्य ही पहुँचाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपने जो संदेश लिखा है वो अत्यंत प्रेरणादायक है। पौधे लगाकर हम सभी को पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अंत में यही कहेंगे कि आप इसी तरह अपना स्नेह विश्वास और निरंतर सहभागिता बनाए रखिए और हम सभी को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते रहिए, मार्गदर्शन देते रहिए। और इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए। और प्रियंका जी, क्यों ना एक और गीत संगीत हो जाए, तो इस बार कौन सा गीत सुना रही हैं आप
0: जी? आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: विजयपथ के इस गीत के बाद अब पढ़ते हैं आपके पत्र। अगला पत्र है चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरी, दिनेश प्रसाद लहरी और कालिंदरी लहरे का। ये लिखते हैं 4 जून के ईमेल की गूंज कार्यक्रम में शबनम जी की प्रस्तुति पसंद आई और गुलदस्ता में प्रसारित कहानी बदलते रिश्तों के आंगन की सार्थक प्रस्तुति के लिए इन्होंने धन्यवाद किया है। साथ ही 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपने सभी से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आग्रह किया है। पेड़ पौधे शुद्ध वायु, हरियाली और स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करते हैं। आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार को धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हुए इन्होंने पत्र का समापन किया है।
1: जी, चिरमिरी कुर्सिया कालरी से इंद्रभान सिंह जी और आपके सभी मित्रगण, सभी परिजन, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। हमेशा की तरह आपने आज भी बड़ा ही आत्मीय संदेश लिख भेजा है। ईमेल की गूंज कार्यक्रम के बारे में जो आपने विचार साझा किया है और हमारे कलाकार साथी के बारे में जो आपने अच्छे अच्छे शब्द लिख भेजे हैं, प्रशंसा लिख भेजी है, वो कार्यक्रम के माध्यम से ही उन तक पहुँच रही है और आपने हमारे कलाकारों का

0: सभी का हौसला अफजाई किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने गुलदस्ता क्रम के अंतर्गत प्रसारित कहानी के प्रति भी सकारात्मक प्रतिक्रिया हमें लिख भेजी है और ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि ये कहानी आपको पसंद आई। विश्व पर्यावरण दिवस पर आपने जो सुंदर संदेश दिया है वह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। सचमुच केवल पौधा लगाना ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल करना भी उतनी ही आवश्यक है। एक छोटा सा पौधा आने वाले वर्षों में अनेक लोगों को छाया, स्वच्छ हवा और जीवन देता है और ये हम सभी को इस पर गौर करना चाहिए और अमल करना चाहिए। आपने बड़े ही स्नेह से बहुत ही अच्छे सुझाव और आप निरंतर सहभागिता निभाते हैं इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और यही चाहेंगे कि आप इसी तरह सुनते रहिए, लिखते रहिए और आकाशवाणी परिवार से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला पत्र है डेर पाटन गुजरात से धीरज वीर अबारी का। ये लिखते हैं, आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार, टेक्निकल टीम एवं सभी श्रोता मित्रों को सादर नमस्कार। हम प्रतिदिन प्रातः से वंदे मातरम से लेकर रात्रि के समापन तक आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी कार्यक्रम सुनते हैं। चिट्ठी पत्री कार्यक्रम को दो आवाज़ों में प्रस्तुत करने, समय बढ़ाने तथा इसे अधिक सजीव बनाने के लिए आपको और इन्होंने पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त किया है। साथ ही ईमेल की गूंज, इंस्टा फरमाइश, आपकी बात, आपके गीत तथा चिट्ठी पत्री कार्यक्रम विशेष रूप से पसंद आते हैं। इनका एक सुझाव है कि व्हाट्सएप आधारित फरमाइश कार्यक्रम भी शुरू किया जाए जिससे वे श्रोता भी आसानी से जुड़ सके जिन्हें ईमेल भेजना नहीं आता, और इन्होंने इतना लिखकर पत्र का समापन किया है।
0: जी धीरज वीर अवारी जी, आपको हमारी ओर से स्नेह भरा नमस्कार। आपने भी बड़ा ही आत्मीय संदेश लिख भेजा है। आपके सकारात्मक विचारों और शुभकामनाओं के लिए हम हृदय से आभारी हैं। जानकर प्रसन्नता हुई कि आप वंदे मातरम से लेकर रात्रिकालीन जय हिंद तक हमारे कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनते हैं और कहीं ना कहीं श्रोताओं का ये जुड़ाव ही है जो हमें निरंतर बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। चिट्ठी पत्री कार्यक्रम के स्वरूप, समय, विस्तार और दो आवाज़ों में प्रस्तुति के संबंध में आपके जो उत्साहवर्धक शब्द हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी कार्यक्रम का सुझाव दिया है। इस कार्यक्रम को हम भी चाहते हैं कि व्हाट्सएप आधारित कार्यक्रम प्रारंभ हो और इसके लिए जो आवश्यकताएं हैं उस पर हम काम कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सकेगा हम इस कार्यक्रम को लाना चाहेंगे। बहरहाल अभी इसकी जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं, उसको हम करने में लगे हुए हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, हम इस पर काम कर रहे हैं। और ईमेल की गूंज, इंस्टा फरमाइश, आपकी बात, आपके गीत, चिट्ठी पत्री जैसे कार्यक्रमों के प्रति आपने जो स्नेह लिख भेजा है वो हमारे लिए अनमोल है। आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर आपने वर्तमान और पूर्व सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं, इसके लिए विशेष रूप से आपका धन्यवाद। हम यही चाहेंगे कि आप इसी तरह अपना स्नेह आकाशवाणी अंबिकापुर के प्रति बनाए रखिए और इसी विश्वास से हमसे जुड़े रहिए, अपनी बातें हम तक लिखकर भेजते रहिए। हम सभी का मार्गदर्शन, हम सभी का उत्साहवर्धन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए। और प्रियंका जी, अब समय है कि हम एकाध गीत और भी सुन लें।
1: जी बिल्कुल, आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म साजन का घर से।

कार्यक्रम चिट्ठी पत्री में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और कार्यक्रम का आखिरी पत्र लेकर मैं अब हाजिर हूँ। और ये पत्र मिला है हमें ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणी पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा का। ये लिखते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष की गौरवशाली प्रसारण यात्रा के अवसर पर सभी सेवानिवृत्त एवं वर्तमान अधिकारियों, उद्घोषकों, तकनीशियनों तथा समस्त आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी कंपियर को पर्यावरण दिवस की आपने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आपको 1 जून से लेकर 4 जून तक गुंजन आपकी पसंद ईमेल की गूंज इंस्टा फरमाइश बहुत अच्छा लगा और विचार बिंदु कार्यक्रम को सुने आप जो आपको बहुत पसंद आया।

0: और 4 जून के गांव करगीत की प्रस्तुति के लिए आपने परमेंद्र कुमार जी और पूरी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही आपने पत्र का समापन किया है।
1: जी, ग्राम खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैगरा जी, आपके सभी परिजन मित्रगण, आप सभी को सप्रेम नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। प्रकृति की रक्षा और हरियाली को बढ़ावा देने का आपका जो संदेश है, हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आपने 1 जून से 4 जून तक प्रसारित हमारे सभी कार्यक्रम, जैसे गुंजन, आपकी पसंद, ईमेल की गूंज, इंस्टा फरमाइश, विचार बिंदु और गांव कर गीत जैसे कार्यक्रमों का आनंद लिया। विशेष रूप से गांव कर गीत कार्यक्रम के प्रति आपका स्नेह और प्रस्तुति के लिए दिए गए शुभ शब्द हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाले हैं। आप जैसे सजग और आत्मीय श्रोताओं का जो ये विश्वास है, ये जो लगाव है, यही हमारी आकाशवाणी की असली पहचान है। आपका निरंतर साथ और विश्वास ही हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। तो हम यही चाहेंगे कि आप इसी तरह सुनते रहिए, अपने विचार हमसे साझा करते रहिए, आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार से जुड़े रहिए। आप सभी को हमारी ओर से धन्यवाद, शुभकामनाएं। और प्रियंका जी, आपने बताया कि आज का ये आखिरी पत्र है
0: जी।
1: तो इससे पहले कि हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम में पत्र और ईमेल भेजने के लिए पता बताएं, मैं श्रोताओं से गुजारिश करना चाहूँगा एक बार पुनः कि आप सभी श्रोता जानते हैं कि इस वर्ष हम आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष को मना रहे हैं। इस उत्सव में अवश्य ही आप भी आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जुड़े अपने अनुभव हम तक साझा कर सकते हैं। अवश्य ही आपके कुछ अनुभव होंगे, कुछ खट्टी मीठी यादें होंगी, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने अनुभव अवश्य हमसे लिख कर भेजें, चाहे वो आकाशवाणी अंबिकापुर से जुड़ी हो या आकाशवाणी के किसी भी केंद्र से जुड़ी हुई अनुभव हो, आप हमसे साझा करिए। हम आपके अनुभव को कार्यक्रम में शामिल करेंगे, जगह देंगे और तमाम श्रोताओं तक पहुँचाएँगे। और एक और विशेष खुशी की बात है कि इस वर्ष हम आकाशवाणी अंबिकापुर की स्थापना के 50 वर्ष को भी मना रहे हैं और 50वें वर्षगांठ को हम 26 दिसंबर को इसी वर्ष मनाएंगे। तो इस अवसर पर आकाशवाणी अंबिकापुर के श्रोताओं से भी गुजारिश है कि आप की जो कुछ भी यादें, जो कुछ भी संस्मरण आकाशवाणी अंबिकापुर से जुड़ी हुई हों, उसे हम तक साझा करें और हम कोशिश करेंगे कि उसे कार्यक्रमों में जगह दें और सभी श्रोताओं तक पहुँचाएँ। और इन्हीं बातों के साथ अब मैं प्रियंका जी आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे श्रोताओं को आप पता बता दें।
0: जी, तो श्रोताओं, हमारा पता और ईमेल आईडी नोट कीजिए। कार्यक्रम चिट्ठी पत्री द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, आकाशवाणी अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, पिन 497001।
1: जी, और हमारी ईमेल आईडी है phambikapurair@gmail.com। तो आप सभी इन दोनों माध्यमों का उपयोग करिए और अपनी बातें, कार्यक्रमों की समीक्षा, अपने सुझाव हमें लिख भेजिए आने वाले अगले शुक्रवार के 10 बजे तक, और हम आपकी बातों को, आपके समीक्षा को, आपके सुझावों को लेकर पुनः हाजिर होंगे चिट्ठी पत्री के अगले अंक में अगले शुक्रवार को ठीक 11:05 से। और तब तक के लिए चिट्ठी पत्री के आज के अंक से मुझे यानी परमेंद्र कुमार को
0: और मुझे यानी प्रियंका को
1: दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने लोगों से पर्यावरण बचाने संकल्प दोहराने का आग्रह किया। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में ईडी ने की पहली गिरफ्तारी। और मानसून केरलम पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 12 जून तक पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में प्रकृति सबसे बड़ी सहयोगी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक वृक्ष, पुनर्स्थापित किया गया इकोसिस्टम और सतत निर्णय राष्ट्र के भविष्य को मजबूत बनाता है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित, स्वच्छ और अधिक लचीला भारत बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल रमेन डेका आज लोकभवन और नया रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण करेंगे। वहीं वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रायपुर के राजीव स्मृति वन में प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र से होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली गिरफ्तारी की है। ईडी ने अभनपुर निवासी कारोबारी जयप्रकाश गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने 3 जून को आरोपी को विशेष न्यायालय रायपुर में पेश किया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में मुख्यमंत्री नूनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले पंजीकृत श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को सम्मानित करेंगे। योजना के तहत प्रत्येक मेधावी छात्र को 1,00,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 1,00,000 रुपये का विशेष अनुदान देने का भी प्रावधान है। दक्षिण पश्चिम मानसून कल 4 जून को केरलम पहुंच चुका है। इसके 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में नमी बढ़ी है और आसपास में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने

0: और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश में एक ही दिन में आयोजित होने जा रही दो महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DELED की परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है, इसलिए परीक्षार्थियों के पास आगामी परीक्षा में शामिल होने का विकल्प सुरक्षित है। ऐसे में पूरी परीक्षा प्रणाली के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। गौरतलब है कि 8 जून को ही DELED के साथ ही CGPSC की मुख्य परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में 9 जून को नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। रायपुर जिले के दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा आज सुबह 11 बजे से बैरन बाजार स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने लोगों से पर्यावरण बचाने संकल्प दोहराने का आग्रह किया। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले मामले में ईडी ने की पहली गिरफ्तारी। और मानसून केरलम पहुंचा, छत्तीसगढ़ में 12 जून तक पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन

0: दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
1: जी
0: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
1: जी
0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है। रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
1: श्रोताओं, जहां तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते
1: क्या
0: हैं।
1: बात है।
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
1: क्या बात है। श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है।
1: जी
0: यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
1: जी
0: यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी
0: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4400-559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: वजह होगी तभी तो ऐसा हो रहा है।
3: महाराज की जय।

0: چیزی شاسم تری
1: خاص اعلان
2: شان شان.
3: आप सबका स्वागत है. मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है.
4: हाँ हाँ महाराज,
3: महाराज
4: बताइए.
3: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर.
4: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज.
3: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा.
5: जी महाराज, पूछिए. क्या प्रश्न है आपका?
3: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूं? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है.
6: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है.
7: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया.
3: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है.
7: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया.
1: जी महाराज, बहुत धन्यवाद.
8: महाराज की जय हो.
9: महाराज की जय हो. महाराज की जय हो. महाराज की.
3: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद.
7: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा.
3: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे. क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
4: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है.
3: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं.
4: इसमें संदेह नहीं है महाराज, कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे.
3: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई. ये लो आपका इनाम, हीरा.
4: धन्यवाद महाराज.
7: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए. उनके बीच कुछ चिंता का विषय था. वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे.
4: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
6: हुआ? मुझे भी नकली मिला.
4: क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है.
10: महाराज की जय. महाराज की जय. महाराज की जय.
3: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
4: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज. यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले महाराज.
3: कहिए, मेरी आज्ञा है. आप सभी निसंकोच कहिए.
4: जी धन्यवाद महाराज. धन्यवाद महाराज. महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज.
3: क्या? और कोई शंका?
4: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है. बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
3: ठहरिए, मैं समझाता हूँ. आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए. पर

0: इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
1: महाराज की
2: जय!
1: महाराज की
2: जय!
1: महाराज की
2: जय!
0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
5: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास

0: होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का ये प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के चार दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह

0: जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे

वह थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 14.2 MHz पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए एक ही शीर्षक पर आधारित कार्यक्रम चयन।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशेष गीतों भरे कार्यक्रम चयन में। आज का शीर्षक है वादियां। साथियों, प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचनाओं में यदि किसी का नाम लिया जाए तो वादियां निश्चित रूप से उनमें शामिल होंगी। दूर दूर तक फैली हरियाली, आसमान को छूते पर्वत, कल कल बहते झरने, बादलों की अटखेलियां और पक्षियों का मधुर कलरव, ये सब मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं जो मन को सुकून और आत्मा को आनंद से भर देता है। हिंदी सिनेमा ने भी वादियों की इस अनुपम सुंदरता को अपने गीतों में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सजाया है। आज के इस सफर में हम सुनेंगे ऐसे ही कुछ गीत जिनमें वादियों की महक, पहाड़ों की ठंडक और प्रकृति की खूबसूरती महसूस की जा सकती है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म अभिलाषा से। गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी, गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत निर्देशन है RD बर्मन का।

0: अरे यार, ये रेडियो को क्या हुआ? आवाज साफ ही नहीं आ रही। ये खरखर की आवाज कैसी है?
1: अरे बुद्धू, एंटीना नहीं, अपना अंदाज बदलो। अब अंबिकापुर रेडियो पुरानी यादों से निकलकर आपके कानों में जादू करने आ गया है।
0: मतलब
1: अब आकाशवाणी अंबिकापुर सुनिए 100.2 FM पर।
2: यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान।
0: अरे वाह, ये तो एकदम साफ है, जैसे कोई कान में गा रहा हो।
1: यही तो है FM 100.2 की स्टीरियो क्वालिटी। अब सुबह की भक्ति हो या शाम के गाने, आवाज मिलेगी बिल्कुल मक्खन जैसी साफ।
3: अच्छा, तो अभी ट्यून करता हूँ
4: आकाशवाणी अंबिकापुर 100.2 FM। आवाज वही, अंदाज नया।
5: स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम चयन में। साथियों, यात्रा का आनंद तब और बढ़ जाता है जब रास्ते में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई दे। वादियों की खूबसूरती का कोई एक रंग नहीं होता। कभी ये धूप में सुनहरी दिखती है, कभी बारिश में हरी चादर ओढ़ लेती है, और कभी बादलों के बीच रहस्यमय सी प्रतीत होती है। इन्हीं बदलते रंगों की तरह जीवन में भी हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता है। लीजिए अब सुनते हैं एक और मनभावन गीत। फिल्म है तुमसे अच्छा कौन है। गायक कलाकार है सोनू निगम, गीतकार है समीर, और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम में हम आज चर्चा कर रहे हैं वादियां विषय पर। साथियों, अभी जो आपने गीत सुना वो कितना खूबसूरत है। सचमुच कुछ गीत ऐसे ही होते हैं जिन्हें सुनते ही आंखों के सामने प्रकृति के अद्भुत दृश्य उभर आते हैं। वादियां केवल पर्यटन स्थल नहीं होती, बल्कि वे मन की थकान मिटाकर हमें नई ऊर्जा देने का काम भी करती हैं। पहाड़ों के बीच बहती ठंडी हवाएं और दूर तक फैली हरियाली जीवन को कुछ ऐसे पल ठहर कर महसूस करने का अवसर देती हैं। इसी एहसास को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला गीत फिल्म रोजा से। एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: साथियों, शाम का समय और वादियों का दृश्य, इससे सुंदर संगम शायद ही कोई हो। डूबते सूरज की लालिमा जब पहाड़ों और घाटियों पर बिखरती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं कोई चित्र बना रही हो। हिंदी फिल्मों के कई यादगार गीत कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और देश के अन्य खूबसूरत वादियों में फिल्माए गए हैं, जिन्होंने इन गीतों को और भी आकर्षक बना दिया। अब आइए सुनते हैं फिल्म केदारनाथ का ये गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज़ों में।

साथियों, हम बात कर रहे हैं आज कार्यक्रम चयन में वादियाँ विषय पर। प्रकृति के बीच बिताया गया समय हमें ये एहसास दिलाता है कि खुशियाँ अक्सर छोटी छोटी चीज़ों में छिपी होती हैं। कभी किसी पहाड़ी रास्ते पर टहलना, कभी झरने की आवाज़ सुनना और कभी बादलों को पहाड़ों से लिपटते देखना, ये अनुभव जीवन भर याद रहते हैं। तो चलिए इसी सुंदर भावना के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म जुनून से। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा।

साथियों, वादियों की ताजगी, पहाड़ों की भव्यता और गीतों की मधुरता से सजा आज का ये संगीतमय सफर अब यहीं समाप्त होने जा रहा है। उम्मीद है कि इन गीतों के माध्यम से आपने भी प्रकृति की उन हसीन वादियों की सैर की होगी, जहां हर दृश्य एक कविता है और हर हवा का झोंका एक मधुर गीत। इसी शुभकामना के साथ कि आपके जीवन में भी खुशियों की हरियाली और सुकून की ठंडी हवाएं हमेशा बनी रहें।

मैं आपकी रेडियो साथी प्रियंका आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी चैन के अगले अंक में एक नए विषय और नए गीतों के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चयन मीडियम वेव और FM बैंड पर। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा

0: को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। जानकारी का विषय है धनिया एक लाभकारी फसल।
2: विश्व में भारत देश को मसालों की भूमि के नाम से जाना जाता है। धनिया मसालों वाली फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके दानों में पाए जाने वाले वाष्पशील तेल के कारण यह भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट एवं सुगंधित बनाती है। धनिया के बीज एवं पत्तियां भोजन को सुगंधित एवं स्वादिष्ट बनाने के काम आते हैं। धनिया अम्बेली फेरी कुल का एक वर्षीय मसाला फसल है। धनिया के कुल उत्पादन का एक बड़ा भाग श्रीलंका, जापान, सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका व मलेशिया को भेजा जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा की आय होती है। इसकी पत्तियाँ एवं मुलायम तने चटनी बनाने तथा साग भाजी व सूप सलाद को स्वादिष्ट बनाने में सहायक हैं। यदि कृषक इसकी वैज्ञानिक ढंग से खेती करें तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धनिया एक बहुमूल्य बहु उपयोगी मसाले वाली आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी फसल है। धनिया के बीज एवं पत्तियां भोजन को सुगंधित एवं स्वादिष्ट बनाने के काम आते हैं। धनिया बीज में बहुत अधिक औषधीय गुण होने के कारण कुलिनरी के रूप में, कार्मिनेटिव और डायरेटिक के रूप में उपयोग में आते हैं। भारत धनिया का प्रमुख निर्यातक देश है। धनिया के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। इसके साबुत दाने या पीसकर अचार, सॉस और मिठाइयों आदि खाद्य पदार्थों को सुगंधित करने के काम में लेते हैं। वाष्पशील तेल से सुगंधित द्रव्य व खुशबूदार साबुन बनाए जाते हैं। इसके अलावा यह तेल चॉकलेट, कैंडी, सीलबंद भोज्य पदार्थों, सूप व मदिरा को सुगंधित करने में प्रयुक्त होता है। इसमें मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होता है। यह विटामिन सी, विटामिन के और प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। इसमें बहुत कम मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, थायमिन और कैरोटीन भी पाया जाता है। यह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करने और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। पाचन तंत्र के लिए भी विशेष रूप से फायदेमंद है। ये लीवर की सक्रियता को बढ़ाने में मदद करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी एक काफ़ी फायदेमंद है। यह ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है। धनिया पत्ती में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अर्थराइटिस में भी बहुत उपयोगी है। मुंह के घाव को ठीक करने में भी ये काफ़ी कारगर होता है। इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक गुण मुंह के घाव को जल्दी भरने का काम करते हैं। नर्वस सिस्टम को सक्रिय बनाए रखने में भी धनिया की पत्ती काफ़ी फायदेमंद होती है। त्वचा संबंधी कई रोगों जैसे पिंपल्स होने की समस्या, ब्लैक हेड्स और सूखी त्वचा में इसके इस्तेमाल से काफ़ी फायदा होता है। जलवायु शुष्क व ठंडा मौसम अच्छा उत्पादन करने के लिए अनुकूल होता है। बीजों के अंकुरण के लिए 25 से 26 सेंटीग्रेड तापमान अच्छा होता है। धनिया शीतोष्ण जलवायु की फसल होने के कारण फूल एवं दाना बनने की अवस्था पर पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। धनिया को पाले से बहुत नुकसान होता है। धनिया बीज की उच्च गुणवत्ता एवं अधिक वाष्पशील तेल के लिए ठंडी जलवायु, अधिक समय के लिए तेज धूप, समुद्र से अधिक ऊंचाई की आवश्यकता होती है। धनिया की सिंचित फसल के लिए अच्छा जल निकास वाली दोमट भूमि सबसे अधिक उपयुक्त होती है और असिंचित फसल के लिए काली भारी भूमि अच्छी होती है। धनिया क्षारीय एवं लवणीय भूमि को भी सहन नहीं करता है। अच्छे जल निकास एवं उर्वरा शक्ति वाली दोमट या मटियार दोमट भूमि उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। सिंचित क्षेत्र में अगर जुताई के समय भूमि में पर्याप्त जल ना हो तो भूमि की तैयारी पलेवा देखकर करनी चाहिए। जिससे जमीन में जुताई के समय ढीले भी नहीं बनेंगे।

0: तथा खरपतवार के बीज अंकुरित होने के जुताई के समय नष्ट हो जाएंगे। बरानी फसल के लिए खरीफ फसल की कटाई के बाद दो बार आढ़ी खड़ी जुताई करके तुरंत पाटा लगा देना चाहिए। धनिया की फसल रबी मौसम में बोई जाती है। धनिया बोने का सबसे उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है। धनिया की सामयिक बोनी लाभदायक है। दानों के लिए धनिया की बुआई का उपयुक्त समय नवंबर का प्रथम पखवाड़ा है। हरे पत्तों की फसल के लिए अक्टूबर से दिसंबर का समय बिजाई के लिए उपयुक्त है। पाले से बचाव के लिए धनिया को नवंबर के द्वितीय सप्ताह में बोना उपयुक्त होता है। बीज दर सिंचित अवस्था में 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज तथा असिंचित में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। भूमि एवं बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को कार्बेंडाजिम और थायरम 2:1 3 ग्राम प्रति किलोग्राम या कार्बोक्जिन 37.5%, थायरम 37.5%, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम, ट्राइकोडर्मा बीडी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को स्ट्रेप्टोमाइसिन 500 ppm से करना लाभदायक है।
1: धनिया एक लाभकारी फसल विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम घर गोसाइन।

हमर घर गोसाई सुने वाला जम्मो बहनी भैया सयान जम्मो संगवारी मन कर ढेरे ढेरे स्वागत करता हूँ। लाली बहन के ओर से राम राम जय जोहार। अब भाई देखिए बहनी हो, हमन अब जानबे करता ही, हमेशा हमन देखता ही कि हमर जिए बर हमर ला अपन भविष्य ला बचाए बर सबसे पहले जरूरी है हमन ला अपन पर्यावरण ला बचाना। और आज हमन अपन पर्यावरण के प्रति जागरूक होए बर और समझे बर जागरूकता लाए बर ए दिवस ला आज 5 जून ला हर साल हमन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाथी। सबसे पहले 1972 में यही दिन 5 जून के संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सबसे पहला पूरा विश्व स्तर पर हमर जो सम्मेलन स्वीडन में आयोजित हुई और ओकर बाद सबसे पहले एकर शुरुआत 5 जून 1973 ला हमन सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस ला मनाए ही। और देखी तब से हमन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस ला मनाता थी, लेकिन इला सिर्फ मनाए के बात नहीं है, जरूरी है एकर ऊपर हमन ला कदम उठाए के। आज हमन देखता ही जागरूकता तो आई से, लेकिन फिर भी हमन ला देखी थी आधुनिकता में ये जो दौर है इमें हमन देखे ही कि सड़क बर स्कूल बर अस्पताल लिघे लिघे जो बनी से हमन ला जो सुख सुविधा मिलत है, चाहे हमन भी खुद अपन बर घर बनाता ही, चाहे हमन कर आवश्यकता बर कई ठन कल कारखाना उद्योग जो बनी से ओकर बर कहीं ना कहीं पर्यावरण ला हमन इतना ज़्यादा उपयोग कर ले ही कि जेकर हमन ला दुष्मर परिणाम भी मिलत है। इतना ज़्यादा सबले ज़्यादा तो पेड़ कर कटाई हुई से, तो हमन ला जरूरी है पर्यावरण ला बचाए बर ज़्यादा से ज़्यादा हमन ओकर ऊपर काम करी, ओकर ऊपर क्रियात्मक रचनात्मक कार्य करी। आज हमन जागरूक हुई ही, हमारी स्कूल में भी नान नान लड़का मन ला भी वृक्षारोपण के माध्यम से जागरूकता फैलाए कर भी होता है। कई ठन जगह में ये जागरूकता फैलाए बर कई ठन माध्यम से कई जो सम्मेलन होता है चाहे कार्यक्रम होता है ताकि हमन पर्यावरण के ऊपर काम करी। अब ऐसा नहीं है कि हमन सुन के रह जाई, बिल्कुल हमन ला जरूरी है कि हमन कैसे पर्यावरण कर समस्या ला दूर करी। जो भी हमन ला सामूहिक रूप से प्रयत्न करना है, एक जन के जिम्मेदारी नहीं है, पूरा समाज कर जिम्मेदारी है। हमर गाँव गंवी के घर में खेती बाती हमर जग जमीन हवे तो देखती कि हमन किनारे किनारे पर जो जगह है तो वहाँ पर अगर हमन धरी धरी में पेड़ मन ला रोप देव। अब तो देखी अभी बरसात आए जाही तो देखी अपने आप रुख राई मन बड़े हो जाही, संगे संगे वो मन कर

जानवर मन से सुरक्षा भी करना है, लगाए से ज़्यादा जरूरी है उमन का सुरक्षा करना और उमन ला बढ़वाना। तो देखिए आजकल हमन आम पकता है, आम खाता ही चाहे अभी कुछ दिन में जामुन आ जाही, जामुन खाब चार पका आता है, चार ला खाता ही, कुछ भी चीज़ ला हमन खाती ही, तो अगर अगर बीज ला हमन अपन घर में थोड़ा सा जगह है वहाँ रोप दे और ओकर से जो पौधा हो ही ओला हमन अगर अपन खेती पाती में चाहे जो हमर जग खेती बाड़ी में किनारे किनारे धरी धरी में रोप दे हम, तो देखी पेड़ पौधा भी तैयार हो जाही और हमर पर्यावरण कर भी रक्षा हो जाही। और बहुत जरूरी है हमन ला अब जो हमन चाहे जन्मदिन ला मनाता ही घरेलू हमन पारिवारिक रूप से जन्मदिन मनाती लड़का मन के, चाहे शादी के सालगिरह ला मनाता ही, सयान मन के भी सालगिरह शादी के होई से ओला भी हमन मनाता ही खुशी से, तो ओकर बर हमन अगर एक एक ठन पौधा ला अगर हमन उपहार के रूप में देब और उमन भी देखी हमन अगर कोई ला उपहार देती तो बड़ा संजो के लड़का मन ला भी देहब कि लाने हूँ पौधा, तो ओहर भी बड़ा संजो के ओला जगाही और ओला बड़ा तीहा जतन करही। तो अगर ऐसे भी हमन उपहार के तौर में अगर उपयोग करब तो बहुत सारा पेड़ पौधा अपने आप हमारे आसपास में हो जाही और एक गांव से दूसरे गांव तीसरे गांव जितना रुख राई हमन जगाब हमन सामूहिक रूप से प्रयत्न करब उतना ही हमार पर्यावरण कर समस्या हमारे जिंदगी हर बाछी हमारे आए वाला लड़का छुआ के हमार भविष्य हर बाछी। और देखिए जो भी हमन ला प्रकृति से निःशुल्क हमन ला जो भी मिली से ओकर भी जो प्रयोग है हमन ला सावधानीपूर्वक करना चाहिए। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हमन आजकल देखती कि प्लास्टिक का उपयोग होता है, हमन कहीं जाता ही कहीं सब्जी दिख गई, फल दिख गई, आमा दिख गई, खीरा दिख गई, तुरंत रुक के हमन लेती और ओकरे से बोलती कि भाई पॉलीथीन चाहे जिलेटिन ला मांगती। तो अगर अपन संगे हमन जो हमार दादा मन करत रहें ना एक ठो घर से जरूर कपड़ा कर झोला सिलवाए रहें और वही में ले जाएँ तो बहुत बढ़िया हो। प्लास्टिक का उपयोग ला हमन कम करब तो हमार पर्यावरण हर बाछी। ऐसे बहुत सारा चीज़ है हमन ला जो प्रकृति से मिली से ओला अगर हमन विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करब तो हमार प्रकृति हर भी बाछी, हमार खुद कर जिंदगी हर बाछी। और मैं एक जगह कहीं पढ़े रहन कभी कि जो सड़क बनाए वाला मन लगभग सड़क एक जगह बनत रहीस, ओकर जगह कर तो नाम याद नहीं है, लेकिन वो जो मनरेगा के मजदूर मन रहिन लगभग ओमन सब कोई मिल के ओमन कर सड़क जहाँ बनात रहिन ओकर धरी जो जगह रहिस वहाँ कम से कम ओमन 100 जन और 100 पेड़ लगाइन और ऐसे हमार पर्यावरण कर रक्षा होइस। तो बहुत बढ़िया बात है अगर हमार मिलजुल के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाए कर कोशिश करी तो हमार ऐसे ही छोटा छोटा प्रयास से हमार पर्यावरण और प्रकृति हर बाछी, हमार जिंदगी हर बाछी। चलिए अब गुड बात तो और करब लेकिन एक ठन छत्तीसगढ़ी लोकगीत है ममता चंद्राकर गाल ओला सुन ली।

हाँ तो सुघर एकन छत्तीसगढ़ी लोकगीतला सुनेन ममता चंद्राकर कर गाल रहीस। जैसे कि आज सुख हवे और हमन सुख के हमर धरोहर के रूप में अपन देश कर कुछ न कुछ धरोहर ला कर जानकारी के बारे में बताती। तो आज मैं अपन हमर देश के उत्तराखंड जो के पाताल भुवनेश्वर जो हमार है एक बहुत ही सुंदर प्राचीनतम और बहुत ही अद्भुत अनोखा इतना सुंदर भूमिगत अने जमीन के अंदर जो गुफा है ओकर बारे में जानकारी लाने हो। बहुत ही खूबसूरत धरोहर है। आ जैसे हमन कहत रहती ना कि भाई लैका मन के छुट्टी होल तो मन ला हर धरोहर में जहाँ कहीं आसपास या हमर देश में कहीं भी है तो मन ला दिखाई। वैसने हमन अपन लैका मन ला दिखाई बर ले जे रहन और उमन के भी बहुत अच्छा लागिस और उमन ला बहुत बढ़िया जानकारी भी मिलीस। देखी जो ये पाताल भुवनेश्वर के बारे में बताता हूँ हवे हमर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में गंगोली हाट से लगभग 14 किलोमीटर दूर जाना पड़ते। और भाई हर प्रकार के साधन भी है हमर गाड़ी टैक्सी हर प्रकार के वहाँ साधन मिल जाते। बस भी है वहाँ जाए बर। आओ देखी बहुत ही सुंदर अनोखा अद्भुत प्राचीनतम जो गुफा हवे जो कि समुद्र तल से लगभग 1350 मीटर एकर ऊंचाई मानल गई से और प्राकृतिक रूप से चूना के पत्थर के आकृति और प्राचीन पत्थर से ये गुफा निर्मित है। और पौराणिक जो हमर पुरखा मन के और बहुत पुराना प्राचीनतम जो कथा में है उनमें भी एकर उल्लेख मानल जाते। और लगभग लगभग यहाँ 90 फीट नीचे लगभग 82 सीढ़ी है पूरा और नीचे जाना पड़ते और दोनों तरफ सिकड़ी बंधल है और जो पत्थर है से ही पूरा सीढ़ी बनी है और नीचे बैठ बैठ के थोड़ा सकरा मार्ग है कहीं कहीं बैठ बैठ के और जाना पड़ते सिकड़ी ला पकड़ के और बहुत पत्थर के चिकना मार्ग है और पानी हर टपकत रहते। और सही में वहाँ पर जाके ऐसे लगेल पाताल है और हमन दूसर लोक में आएगी ही कहे कि पानी भी टपकत रही और चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर अपने आप प्राकृतिक रूप से गुफा में आकृति पत्थर के बनल है और शिवजी

महादेव के वहाँ अंदर में मंदिर है और मानल जाते कि महादेव यहाँ आज भी विराजमान हैं और 33 करोड़ देवी देवता यहाँ उनकर उपासना करे बर उनकर स्तुति करे बर आते हैं। और देखिए हमार धार्मिक रूप से एकर महत्व है और कहीं ना कहीं अगर कोई बात निकली है या पता है हमला कहीं से तो ज़रूर एकर कहीं ना कहीं अस्तित्व में ज़रूर है और बहुत ही सुंदर है ये। और ये गुफा के खोज ऐसे भी मानल जाते कि सूर्यवंश के राजा जो त्रेता युग में जब रहिन वो समय सूर्यवंश के जो राजा ऋतुपर्णा रहिन वो सबसे पहले एकर खोज करे रहिन। और अगर स्कंद पुराण में देखल जाए धार्मिक रूप से तो स्कंद पुराण में यहाँ स्वयं जो महादेव हैं शिव पाताल भुवनेश्वर में खुद विराजमान रहिन हैं और ऐसे मानल जाते कि 33 करोड़ देवी देवता भी यहाँ हैं। और राजा ऋतुपर्ण जो रहिन वो एक जंगली हिरण कर मतलब जंगल में शिकार खेलत रहिन और ओकर पीछा करते करते आइन और एक गुफा के अंदर चले गईन और ए प्रकार से उनके अंदर में एक महादेव जी कर जो शिवलिंग है वो यहाँ मिलिस। और ये भी मानल जाते कि द्वापर युग में पांडव मन यहाँ पर चौपड़ खेले रहिन ओकर भी यहाँ निशान मिलते। और कलयुग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जो रहिन वो 822 ईस्वी के आसपास एक गुफा कर खोज करे रहिन और यहाँ तांबा कर शिवलिंग कर स्थापना करिन। और देखिए बहुत ही देखे में तो अच्छा है ही और यहाँ बहुत सारा अपने आप जो मूर्ति यहाँ कोई नहीं बनाई से कोई गुफा ला उकेर के नहीं बनाई से अपने आप वहाँ पर शिव जी के जटा और हवन कुंड और गणेश जी के जो शिव जी महाराज जब कथा है वो में काटे रहें गणेश जी के मस्तक वो मस्तक आज भी विराजमान वहाँ दिखत है। और ओकर ऊपर 108 पंखड़ी वाला अष्ट ब्रह्म कमल बनीस है ओकर से पानी लगातार टपकत रहते। गणेश जी के मूर्ति और हंस गरुड़ शेषनाग शेषनागला देख के तो ऐसा लगे कि पूरा गुफा ला वही अपने फन के ऊपर माने थामिन है। और हंस है गरुड़ कर पूरा बनीस है पत्थर के ही पूरा गुफा कर ही आकृति जो कि मानल जाते कि ब्रह्मा जी के वाहन हैं। और हवन कुंड है मानल जाते कि यहाँ नाग मन बर जो हवन होए रही नाग वंश बर वही ये हवन कुंडला मानल जाते। और नीचे पाताल में है तो सिकड़ी पकड़ के तो जाना पड़ते थोड़ा सा परेशानी है लेकिन बहुत ही अच्छा है रोचक है जानकारी अपन देश कर धरोहर ला देखे करे कि स्थान हवे। वहाँ जाए से थोड़ा ठंडा भी हो जाते तापमान थोड़ा सा कम लगते ठंडा लगे। और जो बुजुर्ग मन उसे आन मन रहते थोड़ा सा सांस भी फूल जाए काहे कि नीचे जाए में ऑक्सीजन भी कम हो जाए ओकर बर ऑक्सीजन जो मास्क होते वो भी उपलब्ध है सुरक्षा कर पूरा व्यवस्था है। कुछ कुछ मन से मन ला काहे कि एक ही रास्ता है नीचे जाना है वही में नीचे जाना है 82 सीढ़ी नीचे बिल्कुल पाताल में और ओकर बाद फिर वहाँ से वो एक ही रास्ता है। और हजार पैर वाला एरावत हाथी मानल जाते इंद्र के हाथी का भी वहाँ बनीस है पूरा चित्र पहाड़ में अपने आप बनी से अंदर गुफा में बहुत ही सुंदर लगे। और एक बहुत ही रोमांचक वाला देख के बहुत ही रोचक जगह है रोमांचक जगह है जरूर देखी हमारे धरोहर है देश कर। और पूरा व्यवस्था है कि कुछ कुछ मनला नीचे ग्रुप बना के लगभग लगभग 30-40-50 ऐसे भेजते हैं फिर वो मन जब ऊपर आ जाही फिर दूसर मनला और वहाँ नंबर लगते और ऐसा नहीं है कि कोई बाद में आई से पहले चल गई से बिल्कुल नंबर से नीचे जाते हैं आते बहुत ही सुंदर जगह है जरूर जाई हमार धरोहर ला जरूर देखिए अपन देश के जगह जगह के। लेकिन यही बात कहूँ कि कचरा मत फैलाई साफ सफाई कर ध्यान रखी ओकर मान सम्मान करी ओला सहेजी। अब चली एक ठन भोजपुरी गीत ला सुन ली योगेंद्र सिंह अलबेला और संगता मनकर गाल।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: हो तो सुघर कन भोजपुरी गीत ला सुने योगेंद्र सिंह अलबेला और संगता मनकर गाल रहीस संगी हो आज हमन देखता ही हमन जो ऊर्जा कर उपयोग करता ही आज देखती थोड़ा देर अगर लाइट चले जाए तो बिल्कुल हमन परेशान हो जाती कि और गर्मी में तो और मत पूछा तो जरूरी है हमन अगर उपयोग करता ही प्रकृति से हमन ला जो साधन मिली से अब धीरे धीरे वो सीमित हो जाते कहे के मतलब है हमन इतना उपयोग करता ही कि ओकर मात्रा कम होता है तो ओकर ला संरक्षण करे बर उला बचाए के भी हमन ला विवेकपूर्ण ढंग से समझ के ओकर उपयोग करे कर भी बहुत जरूरी है तो जरूरी है हमन ला जो भी ये संसाधन मिली से जैसे कोयला पेट्रोलियम बिजली कर हमन जो बनता है जल से ओकर उपयोग करता ही तो ध्यान देना बहुत जरूरी है हमन ला कहीं भी आस पास जाता ही तो भाई हमन साइकिल से पैदल भी जा सकता ही गाड़ी का उपयोग कम करी सामूहिक रूप से जैसे कहीं दूर जाना है तो अपन गाड़ी से अच्छा है कि हमन बस या कुछ ऐसा सुविधा है ओकर से भी सामूहिक जो समाज के यात्रा वाला जो भी परिवहन साधन है ओकर हमन उपयोग कर सकता ही ओकर से भी हमर ऊर्जा कर बचत हुई घर में भी हमन दरवाजा खिड़की खोल के अगर उजाला रही तो लाइट कम लगाई ऊर्जा कर खपत कम होए वाला हमन एलईडी जो बल्ब आते एला उपयोग कर सकता ही घर में कई ठन यंत्र कर उपयोग करती तो बहुत सारा यंत्र वैसे आ गई से जो हर बिजली कर कम खपत ला लेहल तो ऐसा उपयोग ला करके हमन अपन ऊर्जा का संरक्षण कर सकता ही कई ठन जगह सोलर पैनल भी लगाता है अपन घर में गोबर गैस भी बहुत जन लगाता है तो ओकर माध्यम से भी हमन ऊर्जा कर संरक्षण या अपन पर जो बचत है ओला कर सकता ही और अपन पर्यावरण ला भी बचा सकता ही अब चलिए एक ठन सरगुजिया लोकगीत ला सुनी बाबूदास मानिकपुरी करगाल

तो देखी ही सरगुजिया गीत के साथ हमर विदा लेहे के भी बिल्कुल बेरा होएगी से, तो लाली बहिन ला दे विदा, फिर भेटा हूँ, राम राम जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर गोसाइन। मीडियम वेव 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

नमस्कार श्रोताओं, दूरियां चाहे कितनी भी हों, आपके संदेश और आपकी पसंद के गीत हमें आपसे हमेशा जोड़े रखते हैं। इन्हीं प्यारे रिश्तों और मधुर सुरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज लेकर। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी प्रियंका, और शुरुआत करते हैं अब कार्यक्रम ईमेल की गूंज की। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है विदर्भ संघ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का। ग्राम पंचायत खोंधला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साए, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा। साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और इंद्रजीत कौर छाबड़ा। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और धनंजय कटनकर। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया। बटिडा रोड मडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और कीर्ति भारती। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, दतरेंगी से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। लिवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर किशोर कुमार की आवाज में कलाकार फिल्म का गीत। गीतकार है इंदिवर और संगीत निर्देशन है बप्पी लहरी का।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी साहदरा से। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन का। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केसु खुराना। नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से पीएस नहानकर, निर्मला, विशाल और सोपान तायडे, साथ ही नारायण इंगले। गांव फ्रांसी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। बेडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची, तनु करमकर। डबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर। पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और लखन लाल देवांगन। स्टेट बैंक नगर पश्चिम बिहार नई दिल्ली से लॉ शर्मा और रोशनी शर्मा। अकोला से सुयस रॉय, अलका रॉय। दरियापुर बाभली से गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले। मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमे सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। बापू कॉलोनी, अब्दुल्ला मस्जिद, खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिकरा डावर, बेबी आयशा खत्री। जिला धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी,

बेबी जोई यामिनी तिवारी और उमा तिवारी, सेक्टर 4 कमल विहार रायपुर से कौशल गोस्वामी और रिंकी गोस्वामी, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिक्रेस्टो, रोजी डिक्रेस्टो, पर्ल और विलिस डिक्रेस्टो, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गाइड फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले ईमेल और अगली सुरीली फरमाइश की ओर। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। धनौरा बस्तर से वी पूनम नायडू, के मास्टर, सिवांशु, ऋषु, अक्षय कुमार, वी चैतन्य, अभिषेक नायडू। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यसी, हनी, पूजा, सीता और परिवार के सभी सदस्य। ग्राम चरौदा बार नवापारा, जिला बलौदा बाजार से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर। अनुपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। अहमदाबाद से राजेश कृष्ण और प्रथम सोनी। सुपर स्टार रेडियो श्रोता संघ सारस ताल सोनगरास से प्रेम साय राजवाड़ी, सोमार साय, मेर साय, शिवभगत, हेमंत कुमार और राम खेलावन सिंह पैकरा। ये श्रोता हमारे सुपर स्टार रेडियो श्रोता संघ सारस ताल सोनगरा जिला सूरजपुर से हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिस आसिफ शेख। अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहरा फिल्म का ये गीत पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीतकार है इंदिवर और संगीत निर्देशन है वीजू साह का।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रीतेश संघई, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहुजा, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना अश्विनी और विपुल कामड़े, पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और परिवार के सभी सदस्य। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर कच्चे धागे फिल्म का ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है, हमें इंदिरा चौक तखतपुर से। मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा का। करमा चौक लोहारी डीह जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से। अशोक कुमार साहू लिलेश्वरी, खुशांत साहू और निशांत साहू। तिलक नगर नई दिल्ली से आर एस स्वीटी और आर के शुक्ला। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार और डी के साहू। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, मन्नत गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। वही सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर कोयला फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। गीतकार है इंदीवर और संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में आखिरी गीत के लिए हमें ईमेल भेजने वाले हमें हमारे श्रोता हैं जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयसा सबीहा, अनस और रेहान, पश्चिम बंगाल रानीगंज से रेहान शर्मा और करणदीप, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे और पुष्पा ताई नारे, मित्रनगर बीट शहर से विकास बनसोड़े, रेखा बनसोड़े और अदिति बनसोड़े, जैन मंदिर वाली गली कूरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी और परिवार के सभी सदस्य, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र और रौनक सेन, आप सभी सुनना चाहते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में क्रांति फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत निर्देशन है जतिन ललित का।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम ईमेल की गूंज यहीं समाप्त होता है। अपने ईमेल संदेश और पसंदीदा गीत हमें भेजते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नए अंक में आपकी नई फरमाइशों और मधुर गीतों के साथ। फिलहाल दीजिए अपनी रेडियो साथी प्रियंका को इजाजत। नमस्कार।

0: सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास

0: को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6.40 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6.40 करोड़ वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉ. मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट

0: में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
2: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व

0: पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में पेश है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में ये गजल।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम में पेश है जफर गोरखपुरी का लिखा ये कलाम, अशोक खोसला की आवाज में।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम में पेश है पलाश सेन की आवाज में यूफोरिया का लिखा ये गीत, यूफोरिया के संगीत निर्देशन में।

100.2 MHz पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए एक नजर डालें हमारे केंद्र से आज की प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा पर।

इसी गजल के साथ कार्यक्रम गीत गंधा यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड्स

सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट से। शाम 5:05 पर गैर फिल्मी और फिल्मी भजन पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या का आनंद आप ले सकेंगे। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम गोधूली का समय होगा शाम 6:20 पर। कुछ फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम माधुरी में शाम 6:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम लेकर आएंगे शाम 7:05 पर। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। रात 8 बजे सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का समय होगा। रात 9:15 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय होगा। श्रोताओं के ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज हम पेश करेंगे रात 9:30 पर। रात 10 बजे शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग प्रधान का प्रसारण समय होगा। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित लोकप्रिय कार्यक्रम मन भावन लेकर आएंगे हम रात 10:30 पर। ये थी हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3:03 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। इस दौरान FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः हाजिर होंगे।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, भगवानपुर, नवापारा, इकनारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरनाथपुर, ढोढ़ागांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडीह, दातीढाप, गढ़गांव, बैरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, तपकरा और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, कूड़ेकेला, चरईमारा, रानी कोम्बो, महुआडी, संतपारा, कुटसेरा, टिकलीपारा, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारूमा, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 125 है। ये सामहर सिंघा, नागदरहा, सोखामुड़ा, बोजिया, बुरुंगा, बनहर, औरा

0: बेहरा मार लोटान के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहाभाठा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल दादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति गीतों का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं ये भजन विनोद राठौर के स्वर में।

0: विनोद राठौर के स्वर में ये भजन अभी आप सुन रहे थे, अब सुनते हैं ईश्वर फिल्म से भक्ति रचना सुरेश वाडकर, नितिन मुकेश और साथियों के स्वर में।
1: जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तजनों, कल हम धनुष भंग के प्रसंग पर ठहरे थे। श्री राम ने एक पल में शिव धनुष तोड़ दिया। धनुष टूटने की टनकार से ऐसी प्रतिध्वनि हुई कि तीनों लोग कांप उठे। उस पल का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़ी गहराई से किया है। भारत

ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे ईश्वर फिल्म से। कार्यक्रम में अब सुनते हैं सुमन कल्याणपुर का गाया ये भजन।

और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के स्वर में ये भजन।

इसी भजन के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम भजन संध्या अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आज के युवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियम और आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्रम हेलो फ्रेंड्स में और करते हैं आप लोगों से कुछ प्यारी प्यारी बातें और सुनते हैं आपकी फरमाइशों पर कुछ प्यारे प्यारे गीत। हेलो फ्रेंड
1: हेलो फ्रेंड
0: हेलो फ्रेंड्स,

0: स्वागत है दोस्तों आपका क्रम हेलो फ्रेंड्स में। और आइए दोस्तों देखते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर।
1: हेलो। हाँ नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते जी, कॉलर कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: अम्बिकापुर से राजकुमार भाई बोला था मैडम
0: जी। नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया मैडम
0: जी। और सुनाइए हाल समाचार कैसे हैं आपके?
1: सब ठीक है मैम, बीमारी से मैं जुड़ा लगा रहता है मैडम अम्बिकापुर से।
0: जी जी जी,
1: युवाणी के सभी कार्यक्रम में सुनते रहता हूँ, सभी कार्यक्रम में भाग लेते रहता हूँ मैडम
0: जी। आज कौन सी गीत की फरमाइश लेके आए हैं?
1: हीरो फिल्म का गाना लता मंगेशकर गाया, इंडिया से जागे बाहर ऐसा मौसम देखा पहली बार, लता मंगेशकर गाया हुआ है मैडम गाना।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हाँ खमागनी हुकुम, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापति
1: जी। कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया हूँ। और धूल भरी आंधियाँ चल रही है राजस्थान में तो।
1: अच्छा, हमारे यहाँ भी बारिश आ रही है। शाम को सुबह धूप
0: अच्छा,
1: रहता है, शाम को बारिश रहती है।
0: इधर भी यही हाल है।
1: जी, अभी लगता है पूरे भारत का मौसम ऐसा ही चल रहा है जी। और क्या करते हैं आप?
0: किरण की रेडी लगाता हूँ और आपसे समय समय पर कॉल भी करता रहता हूँ।

0: अच्छा, हमारे यहाँ भी बारिश आ रही है। शाम को सुबह धूप
1: अच्छा
0: रहता है, शाम को बारिश रहती है।
1: इधर भी यही हाल है।
0: जी, अभी लगता है पूरे भारत का मौसम ऐसा ही चल रहा है। जी, और क्या करते हैं हम?
1: किरण की रेडी लगाता हूँ और आपसे समय समय पर कॉल भी करता रहता हूँ और ईमेल भी करता रहता हूँ।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल के हमारे आकाशवाणी परिवार के सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी बहुत ही अच्छा
0: और
1: लगता है प्रोग्राम।
0: जी, आपको कैसे लगते हैं हमारे सारे प्रोग्राम्स?
1: ये फरमाइशी प्रोग्राम आते हैं ना, हेलो फ्रेंड है,
0: जी,
1: हेलो फरमाइश है।
0: जी, आज कौन से गीत की फरमाइश लेके आए हैं आप?
1: हाँ, किशोर दा की आवाज है।
0: जी
1: हाँ, फिल्म का नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। हाँ, गीत के बोल है, मैम मेरे महबूब क्यामत होगी।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स, ये कॉर्नर कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं सिरवा बांधा बेमेतरा से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छा है। गाना पहले बता देते हैं, हमें
0: जी
1: प्रेम रतन धन पायो से कोई भी गीत सुनवा सकते हैं।
0: और बताइए, हाल समाचार कैसे हैं आपके?
1: बढ़िया है, ज्यादातर घर में रहना होता है, बहुत गर्मी है।
0: गर्मी का तो प्रकोप अभी बहुत ज्यादा है, गर्मी धूप बारिश, मौसम का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जी
1: जी
0: जी जी
1: अब मानसून आएगा, इसी का इंतजार है, फिर अपना खेती बाड़ी का भी काम
0: हाँ,
1: होगा।
0: जून आ गया तो मानसून भी है, आने को ही है।
1: जी जी
0: जी फिर खेती किसानी चालू।
1: जी जी
0: जी जी जी आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार,
0: जी नमस्कार जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अशोक कुमार साहू बोल रहा हूँ, करमा चौक मोहाली डीहा, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: जी अच्छे हैं मैम।
0: जी और क्या करते हैं आप?
1: जी मैं तो नियमित रूप से खेती किसानी का काम करता हूँ, और जब खेती किसानी का काम तो अभी फिलहाल नहीं चल रहा, या तैयारी में जुटे हुए हैं अभी, तो फिलहाल मैं राजमिस्त्री का काम भी करता हूँ, जब खेती किसानी से खाली रहता हूँ समय।
0: अच्छा, राजनीति में भी हैं आप?
1: जी
0: जी, बहुत सही है जी। खेतों में क्या लगाने का विचार है तो अभी आपका?
1: जी हम हमारे इस तरफ तो छत्तीसगढ़ है, वो धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है, हमारे इस एरिया में धान ही ज्यादा फसल ज्यादा होता है, और कुछ दूसरा नहीं होता।
0: अच्छा जी, आज कौन से गीत की फरमाइश लेके आए हैं आप?
1: फिल्म चांदनी का सुना देना ना, तेरे मेरे होठों में मीठे मीठे गीत मिठुआ। और दोस्तों के नाम शेयर कर सकते हैं क्या?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: सामतपुर से ऋषि सेन जी है, और पथरिया भरेवर से चंदूलाल सिंगरौल जी है, संबा चौकी से ओम प्रकाश मसिया जी है, और कन्या दमो जिला बालाघाट से ध्रुवाराम साहू जी है। जी इन सभी दोस्तों के पसंद से सुना देना।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी जी जी मैडम नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी मैडम मैं ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर से जीवन सिंह पैकर बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी कैसे हैं आप?
1: जी मैडम एकदम बिल्कुल ठीक हूँ मैडम, बस अब घर का काम करता रहता हूँ मैडम।
0: कौन से गीत की फरमाइश लेके आए हैं?
1: फिल्म का नाम है धड़कन और गाने का बोल है नाना करते प्यार, वही वाला गाना सुना जी का।
0: ये सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, अगर आप भी हमें अपने पसंद के गीतों की फरमाइश करना चाहते हैं तो आप प्रत्येक गुरुवार दोपहर 3:30 से 4 के बीच हमें कॉल कर सकते हैं और हमारा फोन नंबर है 231-917-231-918। और जो हमारे बाहर के साथी हैं और हमें मोबाइल फोन से कॉल कर रहे हैं वो यहाँ का STD कोड लगाना ना भूलें, और हमारा STD कोड है 07774। दोस्तों, इसी के साथ क्रम हेलो फ्रेंड्स बस यहीं तक। दोस्तों, वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का आज की यूवाणी से। इजाजत दीजिए मुझे यानी आपकी दोस्त प्रियम को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं, समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं

0: की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। क्रोध विषय पर आलेख एवं वाचन स्वर हैं प्रियंका सिंह का।
2: क्रोध मनुष्य की स्वाभाविक भावनाओं में से एक है। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो किसी अप्रिय घटना, अपमान, असफलता, अन्याय या मन के विरुद्ध परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। सामान्य रूप में क्रोध एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, लेकिन जब यह आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तब यह व्यक्ति के जीवन संबंधों और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यही कारण है कि क्रोध को विनाश का कारण माना गया है। क्रोध का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह मनुष्य की सोचने और समझने की क्षमता को प्रभावित कर देता है। गुस्से में व्यक्ति सही और गलत का अंतर भूल जाता है। वह भावनाओं के प्रभाव में ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका परिणाम बाद में पछतावे के रूप में सामने आता है। कई बार एक पल का गुस्सा वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ देता है। परिवारों में बढ़ते विवाद, मित्रता में दूरी और समाज में हिंसा की घटनाएं अक्सर अनियंत्रित क्रोध का परिणाम होती है। आज का जीवन अत्यंत व्यस्त और तनावपूर्ण हो गया है। प्रतिस्पर्धा, काम का दबाव, आर्थिक चिंताएं और व्यक्तिगत समस्याएं लोगों को मानसिक रूप से अस्थिर बना रही हैं। परिणाम स्वरूप छोटी छोटी बातों पर लोग अपना धैर्य खो बैठते हैं। सड़क पर मामूली बहस झगड़े में बदल जाती है। घरों में छोटी असहमति बड़े विवाद का रूप ले लेती है और कार्यस्थलों पर क्रोध के कारण संबंध खराब हो जाते हैं। आधुनिक जीवन शैली ने मनुष्य को सुविधाएं तो दी है, लेकिन उसके भीतर सहनशीलता कम होती जा रही है। क्रोध केवल मानसिक अशांति ही नहीं बढ़ाता बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। अत्यधिक गुस्सा करने से रक्तचाप बढ़ता है, हृदय पर दबाव पड़ता।

0: बढ़ता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। चिकित्सा विज्ञान भी यह मानता है कि लगातार तनाव और क्रोध व्यक्ति को कई गंभीर बीमारियों की ओर ले जा सकता है। गुस्से की अवस्था में शरीर में ऐसे रसायन सक्रिय हो जाते हैं जो लंबे समय तक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए क्रोध केवल मन का ही नहीं, शरीर का भी शत्रु है। क्रोध का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। जब व्यक्ति अपने व्यवहार में संयम खो देता है, तब समाज में हिंसा, अपराध और कटुता बढ़ने लगती है। आज अनेक अपराध केवल क्षणिक क्रोध के कारण हो जाते हैं, बाद में व्यक्ति को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखें। हमारे धर्म ग्रंथों और महापुरुषों ने भी क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि का विनाश हो जाता है। भगवान बुद्ध ने प्रेम, करुणा और धैर्य का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से यह सिद्ध किया कि शांतिपूर्ण व्यवहार से भी बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इन महान व्यक्तियों का जीवन हमें यह सिखाता है कि धैर्य और संयम ही सच्ची शक्ति है। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए आत्मसंयम और सकारात्मक सोच आवश्यक है। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत रहना चाहिए। गहरी सांस लेना, ध्यान और योग करना, संगीत सुनना तथा सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना मन को शांत रखने में सहायक होता है। क्षमा की भावना भी क्रोध को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम दूसरों की गलतियों को समझने और माफ करने की आदत डालें तो जीवन अधिक शांत और सुखद बन सकता है। संवाद की कमी भी कई बार क्रोध का कारण बनती है। जब लोग एक दूसरे की बात समझने के बजाय तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, तब विवाद बढ़ने लगते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम धैर्य पूर्वक दूसरों की बात सुनें और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखें। मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार कई समस्याओं को बिना किसी विवाद के हल कर सकते हैं। वास्तव में क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह उत्पन्न होती है। यह मन की शांति, रिश्तों की मधुरता और जीवन की खुशियों को नष्ट कर देता है। इसके विपरीत धैर्य, प्रेम और सहनशीलता जीवन को सुख, संतुलन और सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर आत्मनियंत्रण विकसित करें और क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत और बुद्धिमान कहलाता है। जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए ये जरूरी है कि हम संयम, धैर्य और सकारात्मक सोच को
1: मॉड्यूलेशन पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग रामेश्वरी बघेल के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। आज विश्व पर्यावरण दिवस आए, ये मौका मा देश भर में करे जावा थे आने आने कार्यक्रम के आयोजन। मुख्यमंत्री है आज पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के 10वीं-12वीं के 22 जन पढ़िया लैका मन ला सम्मानित करीन। और छत्तीसगढ़ में 12 जून तक मानसून अमरे के संभावना। अवैय 24 घंटा के दौरान प्रदेश में एक दो जगह हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है। अब समाचार विस्तार ले। आज विश्व पर्यावरण दिवस आए, ये मौका में देश भर में आने आने कार्यक्रम के आयोजन करे जावत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतकोन केंद्रीय मंत्री मन विश्व पर्यावरण दिवस के शुभकामना दीन है। ये मौका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीन है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसन पहल है, हर बछर लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाए में महत्वपूर्ण योगदान दे है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी हकीन कि आज के दिन है पर्यावरण संरक्षण और सरलक विकास ल बढ़ावा दे के प्रतिबद्धता ल व्यक्त करे के प्रतीक आए। एति प्रदेश में घलो आने आने कार्यक्रम के आयोजन करे जावत हैं। राज्यपाल रमेन डे कहा रायपुर के लोकभवन और नवा रायपुर में निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण करीन। ये मौका में ओमन लोगन ले ज्यादा पेड़ पौधा लगाए और पर्यावरण ला सुरक्षित रखे के अपील करीन है। उहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग डहर ले रायपुर के राजीव स्मृति वन में प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए

0: उपाधि देगीस। वे आने आने संकाय में सबले ज्यादा अंक पवैया विद्यार्थी मन ला स्वर्ण पदक प्रदान करेगीस। कार्यक्रम ला संबोधित करत राज्यपाल हकीन कि डिजिटल एडिक्शन आज के सबले बड़का समस्या में एक है। यह सिर्फ मन के नहीं भलुक पारिवारिक और सामाजिक जीवन ला घलो प्रभावित करते। नवा पीढ़ी ला एखर ले बाहर निकले के जरूरत है। वे मुख्यमंत्री है कहिन कि आज के दिन सिर्फ उपाधि पाए के दिन नहीं है, भलुक समाज और मानवता के प्रति नवा दायित्व के निर्वहन बर संकल्प ले के मौका आए। विद्यार्थी मन के सफलता उखर व्यक्तिगत उपलब्धि के संगे संग छत्तीसगढ़ के प्रगति और विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठा लघलो दर्शाते। इति कार्यक्रम ला स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हघलो संबोधित करीन। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप अपन निवास कार्यालय में वर्चुअल माध्यम ले प्रदेश में हाथी संरक्षण मनखे और हाथी के संघर्ष ल कम करे के मनसा ले आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के शुभारंभ करीन। ये मौका में श्री कश्यप बतायन कि हाल बेरा हाथी मन के विचरण सरगुजा बिलासपुर रायगढ़ रायपुर और दुर्ग संभाग के कतकोन इलाका में बगरे है। ऐसन में हाथी संरक्षण के संगे संग प्रभावित इलाका में रही लोगन के सुरक्षा करना घलो जरूरी है। मंत्री है बतायन कि बछर 2022 में करीबन 240 हाथी रिहिन जिकर संख्या बाढ़ के बछर 2026 में करीबन 450 हो गए है। यह वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में बड़का उपलब्धि आए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है प्रदेश में एक दिन आयोजित होया दू ठन परीक्षा के तिथि में बदलाव ले इनकार कर दे है। एक ठन याचिका के सुनवाई करत न्यायालय है किहिस कि डीएलएड के परीक्षा साल में दू घाव आयोजित करे जाते। एकर सेती परीक्षार्थी मन के तीर अवैया परीक्षा में शामिल होए के विकल्प सुरक्षित है। ऐसन में जम्मू परीक्षा प्रणाली के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होही। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग के जानकारी ले दक्षिण पश्चिम मानसून 12 जून तक छत्तीसगढ़ अमरे के संभावना है। बता दें कि अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में एक दो जगह हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है। उन्हें कुछ एक जगह गरज चमक के संग गाज गिरे के घलो चेतावनी दे गए है। अब आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। आज विश्व पर्यावरण दिवस आए ये मौका में देश भर में करे जावा थे आने आने कार्यक्रम के आयोजन। मुख्यमंत्री है आज पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के 10वीं-12वीं के 22 जन पढ़िया लैका मन ला सम्मानित करीन। और छत्तीसगढ़ में 12 जून तक मानसून अमरे के संभावना और यह 24 घंटा के दौरान प्रदेश में एक दो जगह हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम गोधूली। कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं रामबचन सोनवानी और साथियों से भुइहारी गीत।
2: हाजी पीला के सुगाऊ रे।

लोक संगीत के कार्यक्रम गोधूली में आप सुन रहे थे कुछ सरगुजिया लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये गीत फिल्म दिल तो पागल है से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण की, बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत उत्तम सिंह का है।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं अलका याग्निक, जशपिंदर नरूला और उदित नारायण की आवाजों में कुछ कुछ होता है फिल्म से ये गीत। संगीत जतिन ललित का है।

और कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ताबिश रोमानी की शब्द रचना अल्ताफ राजा की आवाज़ में, फिल्म है कंपनी।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: चायपाली केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा।

0: रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के मेधावी बच्चों को आज किया सम्मानित। रायगढ़ पुलिस ने 2 वाहनों से करीब 1.5 करोड़ रुपए का गांजा बरामद कर 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रति वर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। इधर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल रमेश डेका ने रायपुर स्थित लोकभवन और नवा रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रायपुर के राजीव स्मृति वन में प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष अभियान के तहत 2.5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है।
5: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि सब अपनी माँ के नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएं।
4: इस बीच वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पिछले 2 वर्षों में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं। ये अभियान एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। वहीं रायपुर में स्कूली बच्चों ने वन्य प्राणियों की वेशभूषा धारण कर रैली निकाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पेड़ मत काटो का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रायपुर में ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने आज अपने निवास कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से प्रदेश में हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री कश्यप ने बताया कि वर्ष 2022 में प्रदेश में लगभग 240 हाथी थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर वर्ष 2026 में करीब 450 हो गई है। ये वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अंबिकापुर में संचालित गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 6 जून को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज श्रम विभाग द्वारा रायपुर में आयोजित मेधावी

0: छात्र छात्रा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट सूची में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 22 छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 2-2 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। इनमें कक्षा 10वीं के 9 और 12वीं के 13 विद्यार्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सम्मानित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि श्रमिकों के बच्चे केवल श्रमिक बनकर न रह जाएं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, वैज्ञानिक और अन्य उच्च पदों पर पहुंचकर प्रदेश और देश की सेवा करें। मुख्य सचिव विकास शील ने आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टरों की बैठक लेकर उन्हें केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में शामिल हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ में नीट की परीक्षा 19 शहरों में होगी। इसके लिए 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह में विभिन्न संकायों के 9,000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। वहीं विभिन्न संकायों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि डिजिटल एडिक्शन आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। ये केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को डिजिटल एडिक्शन और पॉपकॉर्न मेंटल स्टेटस से बाहर निकालने की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन केवल उपाधि प्राप्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि समाज और मानवता के प्रति नए दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ की प्रगति और विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है।
1: आयुष विश्वविद्यालय में चौथा दीक्षांत समारोह सम्पन्न हुआ है। आज जिन हमारे बेटा बेटियों को उपाधि और मेडल प्रदान किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है।
0: समारोह को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष देश के विकास, सुशासन और जन कल्याण के रहे हैं। इन वर्षों ने देश में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री साव आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आज से 21 जून तक देशभर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क और हितग्राहियों से संवाद करेंगे। इसके अलावा प्रदर्शनी और विभिन्न जन जागरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश की शराब फैक्ट्रियों से निकल रहे जहरीले पानी से प्रदूषित हो रही नदियों को लेकर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 2 अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट कमिश्नर प्रदेश की 3 शराब डिस्टिलरी यूनिट्स का संयुक्त निरीक्षण करेंगे और आगामी 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में एक ही दिन में आयोजित होने जा रही 2 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव से इनकार कर दिया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, इसलिए परीक्षार्थियों के पास आगामी परीक्षा में शामिल होने का विकल्प सुरक्षित है। ऐसे में पूरी परीक्षा प्रणाली के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। रायगढ़ जिले की लैलुंगा पुलिस ने कटकलिया मार्ग पर 2 वाहनों से लगभग 300 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 चारपहिया वाहन और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर मध्य प्रदेश जा रहे थे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में नमी बढ़ी है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़

0: चलने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को केरलम पहुंच चुका है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम श्रम विभाग में भी लागू हो गई है। विभाग द्वारा सेवा प्रदाय करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही लोक प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बार नवापारा परियोजना मंडल के बार परिक्षेत्र में दर्ज वन्य जीव अपराध के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के मेधावी बच्चों को आज किया सम्मानित। रायगढ़ पुलिस ने 2 वाहनों से करीब 1.5 करोड़ रुपए का गांजा बरामद कर 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 12 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। ये वक्त होता है श्रोताओं कार्यक्रम विवरण का, तो आइए एक नज़र डालते हैं हमारे आज के शाम की सभा के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर के कार्यक्रमों पर।

पहले जानिए आज के सभा के शेष कार्यक्रम। आज रात 10 बजे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम राग प्रधान हम आपके लिए लेकर आएंगे। कुछ और फिल्मी गीतों का आनंद आप लेंगे रात 8 बजे सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम में। ईमेल की गूंज कार्यक्रम के तहत रात 9:30 पर और मनभावन कार्यक्रम के अंतर्गत रात 10:30 पर। शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम हम लेकर आएंगे, जिसमें होगी चर्चा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। आजकल में सुनेंगे बीज उपचार का महत्व और रोग मुक्त खेती, कृषि स्टार्टअप एप्स विषय पर, और करेंगे चर्चा समृद्ध अन्न विषय पर भी। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम पेश करेंगे अब से बस कुछ ही देर बाद शाम 7:05 पर। ये तो थे हमारे शाम के सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र डालते हैं कल दिन भर के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

अब जानते हैं कल के सभाओं के बारे में। कल रात 9:30 पर अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती आप सुनेंगे और रात 10 आप सुनिएगा संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में वोकल ख्याल हरी केश गुगुर्दे से। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 8:30 पर सुनिएगा आकाशवाणी रायपुर से कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह और समसामयिक विषयों पर केंद्रित कार्यक्रम बातों बातों में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। रात एक बार फिर से सुनिए, हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे सुबह 9:00। हमारे केंद्र से प्रातः 6:35 पर रामचरितमानस का गायन अनुराधा पौडवाल के स्वर में आप सुनेंगे। विचार बिंदु कार्यक्रम में शब्दों में छिपे एहसास विषय पर आलेख सुनिएगा पूनम उपाध्याय के स्वर में सुबह 6:30 पर, और शाम 5:05 पर पुनः प्रसारण के तहत 7:30 पर जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और कुछ पुराने फिल्मी नगमे हम लेकर आएंगे कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में। लोक संगीत के कार्यक्रम गूंजे जंगल में सुबह 7:00 आप सुनेंगे कुछ लोकगीत, और शाम 6:20 पर गोधूली कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा कुछ और लोक संगीत। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन का समय कल का रहेगा सुबह 9:15 पर। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे नए तराने कार्यक्रम में सुबह 10:00। 11:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद में ईमेल की गूंज के तहत दिन में 1:40 पर, माधुरी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर, और चित्रपट संगीत के अंतर्गत रात 9:15 पर। दोपहर 12:00 मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग आप सुनिएगा। 12:30 पर चंद कव्वालियाँ हम पेश करेंगे। दिन में 1:10 पर बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण बहनें सुनेंगी, और दोपहर 2:30 पर हम पेश करेंगे गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा। हमारे सांध्यकालीन सभा के प्रसारण में शाम 5:00 का वक्त रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का। शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण हम लेकर आएंगे, जिसमें 7:30 पर किसानवाणी के आजकल क्रम में ग्रामीण श्रोता सुनेंगे बातचीत दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु आहार का महत्व विषय पर। ये तो थे कल दिन भर के कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं चंदन दास की आवाज़ में डॉक्टर बशीर बद्र की शब्द रचना।

डॉक्टर बशीर बद्र की ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे चंदन दास की आवाज़ में। अब सुनते हैं उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल।

इसी गजल के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनैया हमर जम्मू श्रोता मनकर, जम्मू किसान भैया बहनी मनकर, बहुत बहुत स्वागत हमर कार्यक्रम चौपाल में। और ये कार्यक्रम लेके आया हूँ मैं भोलू। किसान भैया बहनी मन भाई, हमर अपन चौपाल कार्यक्रम में आज जानकारी कर बात, संगे संग ज्ञान विज्ञान कर गोठला भी करबो, गीत संगीत ला भी सुनबो, मौसम कर जानकारी, मंडी भाव सुन के हमारा पूरा कार्यक्रम हर आज समाप्त होगी। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करल जाता है भाई, आज कर एक विशेष दिन है। विशेष दिन जो हर मन से हर जीव जंतु मन से, पृथ्वी कर जितना जीव जंतु हैं सबसे जुड़ला है, जेकर नाम है विश्व पर्यावरण दिवस। आज कर दिन पूरा विश्व भर में 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक मनाए कर उद्देश्य है कि भाई पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता जो है बढ़े, आम मन से मन एक प्रति जागरूक हों, पर्यावरण संरक्षण कैसे करल जा सकता है ओकर बारे में सुरता करें, ओकर बारे में प्रयास करें। काबर के प्रकृति के प्रति हमन कर बहुत सारा जिम्मेदारी है, जिला हमला सुरता रखना चाहिए, याद रखना चाहिए और वही हिसाब से हमला काम करना चाहिए, जेकर से हमन कर जो पर्यावरण है वो सुघर हमेशा बने रहे। लगातार पर्यावरण बढ़त जाता है, वनम जो जंगल है उनकर कटाई होता है, जलवायु परिवर्तन, जल संकट और जैव विविधता का लगातार जो है ह्रास बहुत बड़ा चुनौती है, जेकर कारण भाई मानव सभ्यता मानव जीवन कर खतरा उत्पन्न हो जाता है। हमन देखब तो भाई ऐसे में स्वच्छ पर्यावरण एक ठन विकल्प नहीं है, बाकी आए वाला पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य पर अनिवार्य आवश्यकता का रूप में हमने ला देखथन। राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम कर माध्यम से स्वच्छता, वृक्षारोपण, प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन ला

बढ़ावा देहल जाता है। हमन देखब तो भाई प्रत्येक मनसे मन ला स्वच्छता के प्रति, अपन पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सबसे पहले अपन घर ला, मोहल्ला के और जो कार्यस्थल है उसे स्वच्छ रखे कर प्रयास करना चाहिए। हमन देखब तो जल होगी चाहे ऊर्जा कर बचत कर बात करथन, अधिक से अधिक हमन ला भाई पौधा भी लगाना चाहिए संगे संग, और पर्यावरण संरक्षण कर जो अगर जो अभियान चलता है ओकर में हमन ला विशेष रूप से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और ये जो पर्यावरण संरक्षण का अभियान है एकर से प्रत्येक जो लोग मन आए उमन जुड़े, एकर बारे में हमला प्रयास करना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस हमला संदेश देते कि भाई प्रकृति का रक्षा ही मानवता का सुरक्षा है, और स्वच्छ पर्यावरण सुरक्षित भविष्य का संकल्प कर सतत विकास पर आधारित है। यही संदेश के साथ भाई हमला आगे बढ़ना चाहिए और पर्यावरण बचाए कर दिशा में जितना भी हमन प्रयास कर सकत हन वो प्रयास हमला करना चाहिए। चाहे जल प्रदूषण कर बात करी, चाहे वायु प्रदूषण कर क्षेत्र में जो काम करना है ओकर बात करी, हर प्रकार का जो क्षेत्र है ओकर में हमला अगर हमन ओकर बारे में काम करब तो ओकर से ही पूरा पर्यावरण धीरे धीरे आए वाला कुछ सालों में बढ़िया से सुघर बन जाए। हमला को प्रयास करना चाहिए कार्बन उत्सर्जन कैसे कम हो सकता है, मोटर गाड़ी जो हमन चलाथन ओकर संतुलित उपयोग करी, जहाँ जगह आवश्यकता है वो जगह उपयोग करी। भाई आज कर जो वैश्विक जो संकट चलता है ओकर में तो भाई हमारे प्रधानमंत्री भी आह्वान करीन है कि बहुत जरूरी नहीं है तो हमला बहुत ज़्यादा गाड़ी मोटर का उपयोग नहीं करना है, सामूहिक रूप से उपयोग करना है। पेट्रोल बहुत मुश्किल से अभी आ पाता है जेकर कारण भाई ओकर संरक्षण करना है जरूरी। कहा है कि जितना भी जीवाश्म ईंधन है ओकर भाई मात्रा तय है, पूरा जीवन अगर हमन प्रयास करी थोड़ा थोड़ा बचत करी तो हमन ओकर जीवाश्म ईंधन जितना भी है ओकर प्रयास ओकर जो उपभोग है बहुत लंबा समय तक हमर पीढ़ी कर सकता है। तो हमला प्रयास करना चाहिए कि भाई जो ईंधन है प्राकृतिक ईंधन ओला बचाए कर दिशा में भी हमला काम करना है। प्राकृतिक ईंधन का अगर हमन समुचित उपयोग करब ओकर से भी पर्यावरण हर धीरे धीरे करके सुघर बन जाते। हमन देखब तो बैटरी वाला गाड़ी आजकल चलाता है, बैटरी वाला गाड़ी कर मांग भी बाजार में बहुत बढ़ गई सा है और वो पर्यावरण कर बहुत अनुकूल है, ओकर से कोई पर्यावरण नहीं होते। तो हमला प्रयास करना चाहिए कि भाई बैटरी वाला गाड़ी ला हमन चलाई, कहीं जग ज़्यादा जरूरत नहीं है तो हमन पैदल अपन काम ला करी। रिकिम रिकिम कस अगर हम प्रयास करब, मिलजुल कर सतत प्रयास करब तो आए वाला समय जो है पर्यावरण सुघर हो जाए। अभी सबसे बढ़िया बात तो है कि भाई जब भी बरखा कर शुरुआत कर जब समय रहते, जैसे अब मानसून हमर भारत देश में आएगी इसे आए वाला दिन में छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश कर जा, सरकार के तरफ से बहुत प्रकार कर जो वृक्षारोपण कर कार्यक्रम चलाते हैं उनमें हमला भाग लेना है, चाहे शासकीय कार्यक्रम हो, चाहे पंचायत स्तर पर हो, गांव स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, सब में हमला भाग लेना चाहिए। और हमला जिम्मेदारी लेना चाहिए कि भाई जो रुख राई मल्ला हमन लगात हन चाहे कोनो लगाता है ओकर हमला संरक्षण करना है, माल मवेशी से बचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमन प्रयास करी ओकर संरक्षण की दिशा में काम करी, ओकर भाई नुकसान मत पहुँचे ओकर दिशा में प्रयास करब तो आए वाला जो समय है ओकर में बढ़िया रुख राई का संख्या बढ़ जाए। और रुख राई ही पर्यावरण ला सुघर बनाए कर दिशा में सबसे प्रमुख घटक है। तो हमला विशेष रूप से भी ध्यान रखना है कि पर्यावरण के प्रति अगर हमला जागरूकता रखना है संगे संग ज़्यादा से ज़्यादा रुख राई मल्ला हमन लगाई एकर बारे में भी हमला प्रयास करना है। किसान भैया अभिनीमन हमन देखा भाई ई वेस्ट तकनीक आजकल चलाता है जेकर से पर्यावरण कर जो संकट है वह धीरे धीरे बढ़त जाता है। ये जो ई वेस्ट तकनीक एक तेजी से विस्तार हुए से जीवन सरल और सुविधाजनक तो होता है लेकिन एक संगे संग इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा कर समस्या भी गंभीर हो जाता है। मोबाइल फ़ोन होगी, कंप्यूटर होगी, टीवी होगी, लैपटॉप होगी, बैटरी मन है, चाहे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उमन कर तेजी से जो अलग अलग मॉडल बदलते जाते और ओकर से भाई नवा नवा मॉडल मन खरीदते हैं, पुराना जो मॉडल है वह कचरा बन जाता है। तो एक से देखब तो पुराना उपकरण बहुत भारी मात्रा में कचरा के रूप में परिवर्तित होगी इसे। अगर जो ई वेस्ट है अगर पर्यावरण एक बढ़िया अगर हम निपटान नहीं करम तो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों पर बहुत गंभीर चुनौती बन जाता है। हमन देखब तो ई वेस्ट के अंतर्गत सीसा, पारा, कैडियम और अन्य विषैला जो तत्व है उमन पाए जाते हैं, माटी होगी, जल होगी और वायुला प्रदूषित करते हैं। असंगठित तरीका से ई वेस्ट का निपटान या जलाय से जहरीला गैस निकलते हैं तो हमला जलाय से बचना चाहिए। और जहरीला गैस से श्वसन संबंधी रोग होते कैंसर होने का संभावना है और अन्य स्वास्थ्य समस्या के खतरा भी बढ़ जाता है। ये संकट से निपटे पर हमला ई वेस्ट कर वैज्ञानिक तरीका से संग्रहण करना चाहिए, पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकिलिंग करना चाहिए और पुनः उपयोग पर हमन एक तैयार कर सकते हैं। साथ ही संगे संग भाई हमन जो आम मन से मना है, आम नागरिक मना है, उमन पुराना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कर ला जो है अधिकृत संग्रह केंद्र जो है कई जगह पर बनी सा है वो जग जाए के जमा कराए दें और जिम्मेदार उपभोग कर आदत अपनाए कर आवश्यकता हमला है।
पर्यावरण संरक्षण कर नवा नवा तकनीक विकास और जिम्मेदार कचरा

प्रबंधन कर बीच में हमारा संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। काहे कि लगातार हमन देखब हमन का पूरा जो जीवन है वो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है उमन पर निर्भर होगी सा है। और कोई भी अगर मॉडल अभी कर दिशा अभी कर समय जो नया रहते वो कुछ साल कर बाद कुछ समय कर बाद वो पुराना हो जाते और कचरा बन जाते, और उकर अगर हमन अपन तरीके से अगर निपटान करब तो पर्यावरण पर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो हमारा जिम्मेदार जो जगह है जहाँ जग संग्रहण केंद्र बनाइन है उकर पुनर्चक्रण कर दें, ओकर बढ़िया वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग करें, वो दिशा में हमला प्रयास करना चाहिए। कहीं जब कोई ऐसा अगर हमारे घरे में भी अगर ऐसा कोई कचरा है ओला संग्रहित करके जहाँ जग जरूरी जगह है जहाँ एक निपटान हो सकत है वो जगह हमन भेज सकत हैं। तो किसान भैया बहनी मन गोट बातला तो और वो और करबो बाकी एक ठन गीत है ओला सुनल जाए।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
7: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई बढ़िया कन गीत ला भी सुने, संगे संग जो संदेश रही सोला भी सुने। किसान भैया बहनी मन, भाई खेती पाती और हमर फसल कर उत्पादन बढ़ाए बर फसल मन ला रोग और कीट से सुरक्षित रखना जो है बहुत जरूरी है। और एकर बर सबसे प्रमुख बात अगर हमन कहब तो भाई, जो भी हमन फसल ला लेना चाहती चाहे लगाना चाहती, ओकर बीजोपचार करना बहुत जरूरी है और ओकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अगर हमला बढ़िया उत्पादन लेना है और फसल मल्ला कीट व्याधि से दूर रखना है। हम देखब तो कृषि वैज्ञानिक जो है उमन कर अनुसार अगर हम बात करी तो भाई फसल कर जो उत्पादन है वो सफल फसल उत्पादन कर अगर हम बात करी तो कर 20-25% तक बीज के गुणवत्ता पर निर्भर करते। अगर स्वस्थ बीज आए, प्रमाणित और उपचारित आए तो फसल शुरुआत से ही मजबूत हो जाते और पूरा मौसम में बेहतर उत्पादन हमला प्राप्त होते। बीज उपचार कराता है बुआई से पहले बीज ला बढ़िया, और जो विभिन्न अलग अलग रसायन रहते जो बीज पर अलग अलग भाई रसायन हो, वहीं रसायन में जैविक उत्पाद में सूक्ष्म पोषक तत्व तो या जैव उर्वरक से उपचारित करना, जेकर कारण बीज और जो माटी जनित जो रोग है ओकर से फसल मल्ला बीज के सुरक्षा मिल सके। हमन देखब तो खेत में जो बीज बोए रहते उनमें अनेक प्रकार कर फफूंद, जीवाणु, वायरस और कीट मन कर संपर्क में आए जाते हैं, जेकर से कई बार बीज अपने से ही रोगजनक तत्व ला संक्रमित कर लेते और ओकर से संक्रमण बढ़ जाते। हमन देखब तो अंकुरण कर जब स्थिति बनते ओघनी अगर संक्रमित बीज आए तो भाई फसल कर उत्पादन प्रभावित होते और पौधा कर प्रारंभिक अवस्था में भी अगर रोग लग जाता है तो ओकर से पूरा आगू कर उत्पादन भी प्रभावित हो जाते। बीज उपचार करे से एक प्रकार का जो समस्या है ओकर में प्रभावी नियंत्रण संभव है। कम लागत में फसल ला प्रारंभिक सुरक्षा प्रदान करे कर उद्देश्य से और पौधा मन ला ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़िया वृद्धि मिले एकर बर बीज उपचार बहुत आवश्यक है। बीज उपचार हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे अगर अंकुरण में अंकुरण है ओकर प्रतिशत में वृद्धि करना है तो उपचारित बीज मन ला अंकुरण सामान्य बीज कर तुलना में अधिक और सामान्य रूप से हो एकर बर खेत में पौधा की संख्या संतुलित रखना जरूरी है। हम देखब तो भाई बीज उपचार से झुलसा रोग, उखटा रोग, जड़ गलन, कॉलर राड, डैम्पिंग ये प्रकार का जो बीमारी है अगर रोकथाम हो जाते। उपचारित बीज से निकले वाला जो पौधा है अधिक स्वस्थ हो जाते और मजबूत रहते, जेकर से भाई उमन कर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रहते उमन में। हम देखा फसल का शुरुआती सुरक्षा होए के कारण पौधा मनला भाई बेहतर विकास मिलते, मजबूत रहते और एक से उपज में भी वृद्धि होते। हम देखब तो बीज उपचार बहुत ही कम

खर्च में होते, जबकि बाद में अगर जब रोग लग जाते तो वही फसल ला बचाए बर अधिक मात्रा में दवा का उपयोग करना पड़ते, जेकर कारण लागत कर वृद्धि बन जाते। हमन देखब तो भाई सबसे बढ़िया बात है कि भाई जैविक और जैव उर्वरक आधारित अगर हमन बीज उपचार करत हन, रासायनिक दवा कर जो दवा कर आवश्यकता अगर कम होता है, जेकर से पर्यावरण हर बढ़िया सुघर बनाता है और प्रतिकूल जो प्रभाव रहते हर घटत जाता है। हमन देखब तो रासायनिक रूप से भी हमन बीज उपचार कर सकत हन, जैसे फफूंदनाशक और कीटनाशक दवा द्वारा बीज ला उपचारित कर सकत हन, एकर से बीज जनित रोग और प्रारंभिक कीट प्रकोप से

0: और घटत जाता है। हमन देखब तो रासायनिक रूप से भी हमन बीज उपचार कर सकत हन, जैसे फफूंदनाशक और कीटनाशक दवा द्वारा बीज ला उपचारित कर सकत हन। एकर से बीज जनित रोग और प्रारंभिक कीट प्रकोप से सुरक्षा मिल जाते। जैविक रूप से भी बीज उपचार हमन कर सकत हन, जेकर अंतर्गत ट्राइकोडर्मा, सीडोमास, एजोबैक्टर, राइजोबियम आदि कई प्रकार का जो तरीका है ओकर से हम लाभकारी सूक्ष्मजीव का उपयोग करके और पौधा मन ला पोषण देह के संगे संग बीज लाभ रोग से बचाए कर व्यवस्था बन जाते हैं। हमन देखब तो भाई सूक्ष्म पोषक तत्व कर माध्यम से भी हमन बीज कर उपचार कर सकते हैं, जेकर अंतर्गत जिंक हो गई, मोलिब्लेडम हो गई, बोरान हो गई, ये प्रकार कई तत्व हैं जेकर माध्यम से उपचार करके और पौधा मन कर वृद्धि और पोषक तत्व के अवशोषण में सुधार हो जाते हैं। हमन देखब तो भाई रोग मुक्त खेती पर आवश्यक उपाय हमें अपनाना चाहिए, हमेशा प्रमाणित स्रोत से बीज खरीदना चाहिए, स्वस्थ बीज का उपयोग करना चाहिए, समय समय पर हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए, एक ही खेत में लगातार एक ही प्रकार का फसल हमें लेह से बचना चाहिए, काबर के ऐसा करे से कीट व्याधि हर बढ़ते, फसल चक्र अपनाए से एक प्रभाव हर कम हो जाते। खेत कर सुरक्षा पर भी अच्छा है, स्वच्छता पर भी अच्छा है, खेत में खरपतवार हो चाहे संक्रमित पौधा का अवशेष और जल भराव वाला हमला समाप्त करना बहुत जरूरी है। संतुलित रूप से हमला उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए, अत्यधिक नाइट्रोजन का प्रयोग से कई बार रोग का प्रकोप बढ़ जाते हैं और संतुलित पोषण फसल ला सुरक्षा प्रदान करते। एक बात का और ध्यान करना है, समय पर सिंचाई हमला करना है, अधिक या कम सिंचाई दोनों ही जो है वो पौधा मनकर में रोक कर समस्या ला बढ़ाते, तो हमला समय पर सिंचाई करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार हमला सिंचाई करना चाहिए। सबसे बढ़िया और जरूरी बात है जेला हमारे किसान भैया बहनी मन करते भी अब आगू भी करना चाहिए कि फसल का समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए। रोग होगी चाहे कीट लगता है प्रारंभिक अवस्था में अगर हमला पता चल जाते तो नियंत्रण करना आसान हो जाते। बीज उपचार खेती का सरल, सस्ता व अत्यंत प्रभावी तकनीका है, जेकर माध्यम से रोग मुक्त खेती करके किसान भैया बहनी मन लाभ कमा सकता है। हमन देखब फसल का शुरुआती समय में अगर बीज उपचार रहते तो सुरक्षा मिल जाते, जेकर कारण उत्पादन बढ़ते, लागत घटते और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान है। भाई किसान भैया बहनी मन अगर बुआई से पहले बीज उपचार ला बढ़िया से कर लें और अनिवार्य रूप से अगर एकर पद्धति ला अपनाएं, एकर तरीका ला अपनाएं और वैज्ञानिक किसी पद्धति का पालन करें तो बहुत बढ़िया उत्पादन मिल सकता है, फसल मन उच्च गुणवत्ता वाला हुई और अधिक आय किसान भैया बहनी मन प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई स्वस्थ बीज, स्वस्थ फसल और समृद्ध किसान, यही रोग मुक्त खेती कर मूल मंत्र है। तो किसान भैया बहनी मन आगू तो और गोट बात ला करबो, बाकी एक ठन हमारे संगे किसान से गोट हो रही जीतूराम चौहान ग्राम केसमा कर हैं, समेकित कृषि कार्य करके बढ़िया लाभ कमाते हैं, उनका जो गोट है सोला सुनल जाए। आज हमारे संगे हैं जीतू राम चौहान जी ग्राम केसमा जिला सरगुजा का रहवैया हैं, एक बढ़िया प्रगतिशील कृषक हैं, उनका बढ़िया खेती पाती करी ना है और आज इनका से गोट बात करी थी। सबसे पहले भाई रावकर्स बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम।
1: मेरा नाम जीतू राम चौहान ग्राम केसमा फलाक ऑफिस उदयपुर जिला सरगुजा का रहने वाला हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ।
0: कितना खेत बाड़ी है रावर जगह?
1: मुझे ज़्यादा खेत बाड़ी नहीं है, 9-10 एकड़ है।
0: अच्छा, तो का जगह थी हमें?
1: हमें खाली धान उड़द और अरहर।
0: तो अभी जैसे अभी तो गर्मी का समय है, अभी तो कुछ जगाया है कि अभी पड़ती पड़ी सर?
1: अभी धान है या उड़द है।
0: तो गर्मी में धान जगाया रहा?
1: हाँ।
0: तो कितना क्षेत्र में धान जगाया है?
1: ये अभी है 3 एकड़ में धान है।
0: तो जब से गर्मी का जो धान लगा था और लगाए ही, हाँ। तो उनमें रोग राई कर कोई समस्या रहते नहीं रहते?
1: रहते रोग राई कर समस्या, कीड़ा करल, कीड़ा मकोड़ा इधर उधर कर रहे।
0: कौन विशेष रोग है जेकर अभी समस्या देखे पर मिलता है?
1: अभी वो बाल मरते हैं धान कर।
0: अच्छा, तो अगर दवाई बीरो ला कैसे करती?
1: अभी तो फिर गई से तो दवाई बीरो तो नहीं लगाए हैं ना, दवाई बीरो लगा तो फिर मौसम नुकसान पहुँचाए, कैसे दवाई बीरो नहीं लगाए
0: तो समय से उकर निगरानी नहीं कराए तो बीमारी पता चल जाती है?
1: हाँ, समय से तो निगरानी कर पाए भाई।
0: कोई बात नहीं है, आगुधार समय से निगरानी करिए। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी आय कर जो समय दिखत है भाई, एक महीना बाद धान का तैयारी होने लगी, तो धान का तैयारी से पहले खेत का तैयारी कैसे करती?
1: धान का तैयारी से पहले अभी वो धान कटाते जाए फिर रोपा बीड़ा में लगा देवो, गाछी से लगा, गाछी तैयार होते रहे, फिर एक वो गाछी भी तैयार होते रहे, फिर धान कटाई भी होते रहे।
0: तो बरखा घनी जैसे अभी धान लगाए का समय अभी आगू है, तो ओकर से पहले खेत कर कहीं जुताई उताई कौन प्रकार से करती है बारे में रोज बताई?
1: खेत कर अभी जोताई करत हन, अभी गर्मी सीजन में जोताई कर लेते हैं, बाकी जो नहीं ये बुनलते में
0: माला खेत कर बढ़िया तैयारी होगी। खातू कर व्यवस्था कर कहाँ से इंतजाम करता?
1: खातू कर व्यवस्था कुछ सोसाइटी से कर लेते हैं, कुछ गोबर खाद करके लेते।
0: ये बतावा कि गोबर का खाद बढ़िया है कि रासायनिक खाद बढ़िया रहते?
1: सबसे अच्छा तो गोबर खाद है, लेकिन अब उतना गोबर खाद नहीं है पाए।
0: तो गांव में तो आजकल गोबर खाद बढ़िया मिलता है और बेचत भी है कुछ?
1: बेचत भी है, लेकिन अब महंगा पड़ते हैं।
0: अच्छा, गोबर खाद महंगा पड़ता है।

0: खरीदे में महंगा पड़े।
1: तो दुई वाला मिला के लगा थी? नहीं,
0: दोनों वाला मिला के लगा थी।
1: नर्सरी के बारे में रोरे बता थी। हाँ। तो नर्सरी हर कब ले तैयार करना शुरू करी है, और बाद कब ले धान लगी है?
0: नर्सरी अभी बरसाते में तैयार हुई।
1: कैसे थरहा करता कि छिटकौनी करता?
0: थरहा करता हूँ सर।
1: थरहा कौन समय ले शुरू हो जाते, कितना दिन लगते नर्सरी तैयार होने में?
0: थरहा हमारे 21 से 22 दिन तक लग जाल का है।
1: तो जो बीज का थरहा करता, तो लोकल बीज रहते कि हाइब्रिड बीज ला लगा था?
0: अभी तो सब हाइब्रिड लगा था।
1: और उत्पादन कितना मिल जाते हमें?
0: उत्पादन बढ़िया मिल जाए,
1: मैंने एक एकड़ में कितना हो जाते?
0: लोकल से अच्छा मिले,
1: लोकल से बढ़िया मिलते
0: मिले।
1: तो जैसे धान कर जो भाई फसल लगाए कर बारे में है, थरहा ला कहीं जगह अलग से नर्सरी तैयार करता कि सीधे खेते में लगाए देता?
0: अलग से कर रहा था।
1: कितना जगह में लगा था नर्सरी तैयार करता?
0: एक खाड़ी में एक पैकेट लगाया रहता।
1: एक खाड़ी में बढ़िया हो जाते, पूर जाते?
0: बढ़िया हो जाए।
1: तो जो नर्सरी तैयार करता, तो अगर बीज में कोई बीज उपचार करता कि डायरेक्ट लगाए देता?
0: नहीं, वो डायरेक्ट वो दुकान ले खरीद के लाना।
1: नहीं माने होंगे कहीं रोग राई मत लगे तो बीज उपचार करते कार्बन डाइजिंग?
0: नहीं करें,
1: पर करके लगाई है तो रोग राई का समस्या और कम है ना। नर्सरी लगा था, कितना दिन के बाद हमें खातु का छिड़काव करना रहते?
0: खातु तो एक बार हम लगा एक टाइम में कर देते हैं।
1: कितना खातु देना पड़ता है
0: गाछी के टाइम में?
1: कितना खातु देना पड़ता है
0: गाछी के टाइम में? अभी एक पैकेट लगाए हम तो 5 किलो DAP, 2 किलो यूरिया लगा दे। जाम के बाद में फिर वही यूरिया मार देव।
1: अच्छा,
0: लगा एक टाइम में दवाई यूरिया मार देव संग है, फिर लगाबो, लगा एक टाइम में फिर वही फिर खाद मारो खेते।
1: अच्छा, तो इतना में हो जाते?
0: हाँ।
1: और सिंचाई कर का व्यवस्था बनाए ही रहो रे?
0: सिंचाई कर व्यवस्था खेते में इसे पानी हो जाए, बोर
1: बरखा घनी ना, बाकी दूसरे मौसम में अगर लगाना है तो?
0: बोर उर है,
1: बोर है।
0: हाँ, बोर
1: तो
0: है।
1: बोर जो है वो कहाँ जग से मतलब करवा है, सरकार की तरफ से सब्सिडी में है कि कहीं जग से और है?
0: नहीं, प्राइवेट बोर करवाए हैं।
1: तो साल भर पर पानी हो जाते?
0: हाँ, साल भर पानी हो जाए।
1: तो सिंचाई कर जो व्यवस्था है तो वाला सीधे बोर में करता कि ड्रिप सिंचाई वगैरह व्यवस्था बनाया है?
0: डायरेक्ट बोर से करा था,
1: डायरेक्ट बोर से
0: लगाए हैं।
1: ये धान के संगे संगे और कोई फसल ला भी लेती?
0: धान के संग संग वही उड़द हो जाए, हमारे राहर हो जाए।
1: तो उड़दा का खेत है तो दूसर हुई नहीं?
0: वो तो डाढ़ है।
1: तो डाढ़ में उड़दा के संगे उड़दा बस लेता कि मकई भी संगे जगा था?
0: मकई उड़दा
1: जो लगे संगे लगा था, अलग अलग लगा था?
0: उड़दा या राहर अलग संगे लगा था?
1: संगे लगा था, मकई ला अलग लगा था,
0: मकई अलग लगा।
1: ये धार मकई जगाए का विचार है कि नहीं है?
0: ये धार जगाए विचार है
1: भाई। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो मकई कर बढ़िया कीमत मिलने लगी से है ना। तो कितना क्षेत्र में मकई लगाया लेता?
0: मकई हमारे 3 एकड़ में हो जाए।
1: तो 3 एकड़ मकई में कितना कमाई हो जाती है साल भर?
0: साल भर में हो जाए हमारे 1.5 से 2 लाख।
1: तो एक सीजन लगा था कि गर्मी और धरी लगा
0: गर्मी था? में गादा खाए पर लगा था बस,
1: लगा था अपन खाए पर। अच्छा,
0: अपन खाए पर।
1: तो मकई जगाए के समय विशेष सावधानी क्या रखना चाहिए?
0: खाद गोबर
1: कैसे कैसे करना होकर पूरा तैयारी के बारे में लोग बताते हैं?
0: नागर जोत के हम एक एक लेके गोबर खाद करबो, फिर DAP करबो, फिर यूरिया करबो, फिर गाछी लगाबो।
1: नहीं माने कितना कितना दिन में भाई खेत कैसे तैयार करता, कितना दिन बाद लगाता, कितना सिंचाई करता, ये हिसाब ले बतावा।
0: जोत हम तेकर बाद तुरंत तैयार हो गई से जमीन, फिर लगा शुरू कर दे।
1: अच्छा,
0: लगाएं फिर पाटा मार दें, पाटा मार दें तेकर बाद में अगर पानी आते ठीक है, नहीं आते पानी तो फिर बोर ले देते।
1: तो ये जब मकई कर कौन सा जो प्रजाति है जहर बढ़िया उत्पादन राउडर कर भेटात है?
0: हम लोग तो सबसे विशेष मकई तो जैसे होते होवे करें, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पाद हमारे धाने है।
1: धाने हैं ना, मैंने मकई हर भी बढ़िया उत्पादन हो जाते हैं।
0: हो जाते हैं।
1: तो मकई ला कैसे करता जब उत्पादन, जब कहाँ भेजता?
0: मकई ला दुकान में दे देते हैं, चाहे सोसाइटी में दे देते हैं।
1: तो भाई सरकारी तो ज़्यादा रेट मिलता है? नहीं,
0: ज़्यादा रेट मिलता
1: है। अब सरकार जग देना है।
0: हाँ, हाँ,
1: है ना।
0: हाँ।
1: उड़दा का तैयारी है कैसे करता वाला बतावा?
0: उड़दा तो एक एक लगाते हैं हम।
1: तो कितना खेत में लगा था उड़दा?
0: उड़दा हम 1.5 एकड़ में लगा लेते हैं।
1: और कितना उत्पादन भेटा जाता
0: है? हमला वो खाए पर भी साल भर हो जाए, फिर बेचे पर भी हो जाए।
1: तो बेच के उड़दा कर कीमत है तो बढ़िया भेटात हुई
0: है। नहीं,
1: तो ये उड़दा लगा था, मकई लगा था, धान लगा था, कुछ साग सब्जी मतलब भी जगा था?
0: साग सब्जी गर्मी में जो भी साग सब्जी है सब
1: तो अपने खाए पर की खाल बेचे पर भी?
0: अरे बाजार जाना नहीं पड़े, बस खाए पर। तो
1: अपने खाए पर हो
0: जो खाए खाद खाद भाई जाल दे देते बाजार में।
1: माल मवेशी का स्थिति, कितना माल मवेशी रखे है?
0: माल मवेशी नहीं है ज़्यादा, एक नागर है, बाकी ट्रैक्टर में काम है जाए। जहाँ जब मौसी नहीं उसरत रहे नागर तो फिर ट्रैक्टर में देखता, नहीं तो मौसी में।
1: बहुत अच्छा है।
0: हाँ।
1: तो मैं बोला था कि जो खेती पाती है ज़्यादातर ट्रैक्टर में करा थी? नहीं,
0: हाँ अभी तो ट्रैक्टर है।
1: तो ट्रैक्टर कहीं जब किराए मंगा था कि खुद खरीदे है?
0: नहीं, किराए मंगा था।
1: बढ़िया हो जाते उसे काम था?
0: बढ़िया हो जाए,
1: बहुत अच्छा बात है भाई। इतना बढ़िया हमारे किसान भैया गोठियात आए हैं। माल मवेशी कर खाए बर हरा चारा की व्यवस्था कैसे करती?
0: हरा चारा अभी बांध रहते हैं मौसी में।
1: तो कर चारा की व्यवस्था कैसे बनाता, कहीं जगह
0: चारा तो घर में हो जाए? अभी धान वान लगी से।

0: तो पैर मन में घास फांस हो जाए, बारी मन में घास फांस हो जाते, मकई मन है तो सब हो जाते खाएगा।
1: तो राहुल इतना बढ़िया खेती पाती कर थी और धान ला भी लगाए ही, मकई ला भी लगा थी, उड़दा ला भी लगा थी, तो एक बढ़िया अपन जीवन यापन, बढ़िया परिवार चल जाता है, नहीं
0: बढ़िया परिवार चल जाते थे।
1: चलो बहुत अच्छा बात है राहुल कर, इतना बढ़िया व्यवस्था देख के भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। हमारे संगे गोट करे हैं राहुल का, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद।
1: बढ़िया जीतू राम चौहान जी से गोट हुई से, और बढ़िया समेकित कृषि करता है हमारे किसान भैया बिनी मन भी। प्री मानसून कर जो बरखा होता है ओकर देख के भाई उमन भी खेती पाती कर काम ला एकदम तेजी से करता है। और बढ़िया भाई मोर तो सलाह यही रही कि बढ़िया योजना बद तरीका ले करें, और संगे संग भाई अच्छा बीज का चयन करें और अच्छे से हमन खेती पाती ला करब, तो आए वाला समय में जो है हमला नुकसान नहीं होगी। संगे संग भाई किसान भैया बहनी मल हमल फसल बीमा कर बारे में भी बताथन, हमर जग संदेश भी आज हम सुने फसल बीमा कर संबंध में। तो जो किसान भैया बहनी मन अपन फसल कर बीमा ला नहीं कराते हैं ओमन जरूर कराएं, एकर से जो प्राकृतिक आपदा कर जो स्थिति में किसान भैया बहनी मल्ला नुकसान होते नुकसान से बच सकता है तो फसल बीमा जरूर कराना चाहिए। आजकल हम देखब किसान भैया बहनी मन खेती पाती कर क्षेत्र में भी कैसी खेती पाती कर जो काम है ओकर में भी नवाचार कई प्रकार कर होता है। हमन देखब तो किसान और युवा मन लगातार खेती पाती में नवाचार करता है, जिला आजकल भाई अंग्रेजी में कथन एग्रीकल्चर स्टार्टअप, जिला कृषि कर नवा नवा आविष्कार हमन बोल सकत हन, नवाचार बोल सकत हन। हमन देखब तो भारत हर एक कृषि प्रधान देश है जहाँ जग आज भी बहुत बड़ा आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पाती पर निर्भर है। हमन देखब आज का समय जो बदलत जाता है एकर में खेती पाती कर क्षेत्र में भी आधुनिक तकनीक नवाचार और उद्यमिता ला बढ़ावा देता है और ओकर कारण आगे भी लोग बढ़ते हैं। हमन देखब तो यही परिवर्तन ला खेती कर स्टार्टअप हमन कथन, खेती ला अधिक लाभकारी वैज्ञानिक और बाजारोन्मुख बनाए बर जो काम करल जाता है यही ला स्टार्टअप कथें। कृषि स्टार्टअप खाली किसान भैया बहनी मन का समस्या का समाधान ही नहीं करते बल्कि ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा मन है उमन बर रोजगार कर अवसर, स्वरोजगार कर अवसर और नवा नवा प्रकार का जो अवसर है ओला भी उत्पन्न करते हैं। हमन देखब तो खेती से जुड़ल कोई भी समस्या का समाधान भर तकनीक नवाचार नवा व्यवसायिक मॉडल के माध्यम से स्थापित उद्यम कृषि स्टार्टअप कहलाते हैं। ये कृषि स्टार्टअप खेती बागवानी पशुपालन मत्स्य पालन कृषि विपणन खाद्य प्रसंस्करण ड्रोन तकनीक जैविक खेती और कृषि परामर्श और आपूर्ति श्रृंखला जैसा क्षेत्र में काम करता है। हमन देखब तो कृषि तकनीक के अंतर्गत ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आजकल हमन देखब तो AI जैसा हर जगह हमन सुनथन के AI का इस्तेमाल हर जगह होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो सेंसर पर आधारित है एकर माध्यम से सिंचाई और सटीक कृषि तकनीक कर माध्यम से हमन देखब तो खेती पाती में उत्पादन बढ़ाए कर दिशा में काम चलता है। हमन देखब तो मोबाइल ऐप होगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान भैया बहनी मल्ला मौसम कर जानकारी फसल प्रबंधन कीट नियंत्रण बाजार भाव कर जानकारी एकर माध्यम से मिलता है। हमन देखब तो खाद्य प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन कर दिशा में काम चलता है जेकर अंतर्गत फल सब्जी अनाज और अन्य जो कृषि उत्पाद हैं उमन कर प्रसंस्करण करते हैं और उमन कर गुणवत्ता ला बढ़िया करके और बाजार में प्रसंस्करण करे के बाद ओकर मूल्य बढ़ जाते हैं जेकर जो विक्रेता किसान हैं उमन कर आय हर बढ़ जाता है। जैविक और प्राकृतिक खेती कर दिशा में भी ये कर माध्यम से काम चलाता है जेकर में रसायन मुक्त कृषि उत्पाद कर जो मांग हमन देखब तो भाई बहुत बढ़ गई सा है। हमन कहीं जगह देखब तो भाई जैविक खेती है चाहे प्राकृतिक खाद से और प्राकृतिक विधि से अगर उत्पादित कोई फसल आ है तो ओकर बाजार में बहुत मांग है। जैविक खेती आधारित उद्यम तेजी से लगातार विकसित होता है एकर माध्यम से किसान कर भी आर्थिक स्थिति बढ़ता है। कृषि विपणन और ई कॉमर्स कर क्षेत्र में भी काम चलता है जेकर माध्यम से किसान अपन जो उपभोक्ता मन तक सीधे अपन फसल ला चाहे बड़ा बड़ा बाजार में फसल ला बेच सकता है ऑनलाइन माध्यम से भेज सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकर माध्यम से तैयार कर गई सा है जेकर में कृषि व्यापार में नवा क्रांति आएगी सा है। कृषि मशीनरी कर किराया सेवा कर भी बारे में कृषि स्टार्टअप कर माध्यम से काम चलाता है जेकर माध्यम से छोटा किसान मनला कम लागत पर आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराल जाता है जेकर अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर मशीन बैंक जैसा मॉडल विकसित होता है। हमर जो क्षेत्र कर चाहे ग्रामीण क्षेत्र कर जो युवा मन है उमन पर कृषि स्टार्टअप और कर माध्यम से रोजगार और उद्यमिता का नवा नवा द्वार खुलता है। कृषि स्नातक होगिन इंजीनियर होगिन तकनीकी विशेषज्ञ होगिन और नवाचार में रुचि रखे वाला युवा जो है कम निवेश में अपन स्टार्टअप शुरू कर सकता है। ड्रोन सेवा माटी परीक्षण जैविक उत्पाद विपणन कृषि परामर्श नर्सरी।

प्रबंधन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसा जो क्षेत्र है ओकर में बहुत ज़्यादा संभावना है। और हमारे जो गांव का चाहे शहर का जो युवा मन है कृषि स्टार्टअप में यही मन प्रकार में से कोई भी चीज़ में स्टार्टअप करता है और बहुत बढ़िया लाभ कमाता है। हमने देखा तो स्टार्टअप से किसान भैया बनी मल्ला का लाभ है, एक बारे में भी हमला जानना चाहिए। आधुनिक तकनीक से आसान पहुँच हो जाते, उत्पादन लागत में कमी हो जाते और उत्पादकता में वृद्धि हो जाते, बेहतर बाजार मिल जाते, उचित मूल्य कर उपलब्धता हमारे किसान भैया बनी मल्ला भेटाए जाते, फसल कर जो जोखिम है ओकर प्रबंधन करे में सहायता होते, कृषि उत्पाद कर मूल्य संवर्धन हो जाते जेकर से किसान भैया बनी मल्ला ज़्यादा उन जो उत्पादन है वो भेटाते, ज़्यादा आय भेटाते, आय का नवा नवा स्रोत मिलते। केंद्र और राज्य सरकार कृषि स्टार्टअप ला बढ़ावा दे बर विभिन्न योजना कर माध्यम से वित्तीय सहायता भी देता है, प्रशिक्षण भी देता है, एक संगे संग तकनीकी मार्गदर्शन भी देता है। कृषि विश्वविद्यालय हो गई, कृषि विज्ञान केंद्र हो गई और विभिन्न संचार भी जो है नवाचार आधारित कृषि उद्यम ला प्रोत्साहित करता है। तो हमारे क्षेत्र का जो भी युवा मन है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का रहें चाहे शहरी क्षेत्र का रहें, कृषि स्टार्टअप में कुछ अगर रुचि रखते हैं तो सरकार मतलब प्रशिक्षण दे के वित्तीय सहायता देते हैं, जरूर लाभ ला लें। किसान भैया बिन मन भाई गोटला तो आगू और करबो, बाकी ठन गीत है ओला सुनल जाए।

भाई बढ़िया कन गीत लसुन है। अब बेरा हो के सब मंडी भाव और मौसम का जानकारी कर। तो हमर अंबिकापुर मंडी में जो फसल कर कीमत हर भेटाई से वही हिसाब से सरसों हर 6,000 रुपये प्रति कुंटल, गन्ना हर 360 रुपये प्रति कुंटल, चना हर 2,600 रुपये प्रति कुंटल, रामतिल हर 7,000 रुपये प्रति कुंटल। मौसम कर बात करब तो आज कर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। कल कर बात करब तो कल कर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहे का संभावना है। किसान भाई अभिनीमन भाई बेरा हर तो कहता है कि हमन अपन जो कार्यक्रम है चौपाल से विदा लेना चाहिए, तो आने दिन फिर भेंट हुई। चली राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश। ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के इस अंक में आप सभी के साथ मैं हूं आपकी रेडियो साथी पूनम उपाध्याय। साथियों, सुरों की महफिल सज चुकी है और गीतों का कारवां भी तैयार है। आपको मेरा स्नेहिल नमस्कार फरमाइशी फिल्म संगीत के इस रंगारंग कार्यक्रम में। तो तैयार हो जाइए सुरों, संगीत और मधुर यादों के इस मनमोहक यात्रा के लिए। और अब पढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश। कार्यक्रम में पहला गीत सुनने के लिए हमें भेजा है फरमाइश इन सभी श्रोताओं ने। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और पूरा परिवार। जोड़ा पीपल अंबिकापुर से सरजाल स्वरूप आनंद सरजाल, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार। जिला नांदेड़ यताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल। आलोट जिला रतनाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। आजादनगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराणे, विनीता गंगराणे, मोहम्मद हसनैन पवार। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, जगदीश जौहरी। गांव और डाकघर निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी।

हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अल अकमल, नफीसा प्रवीण, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, प्यासा सावन फिल्म से, लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। संतोष आनंद के बोल हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

प्यासा सावन का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। अब सुनते हैं हीरो फिल्म से गीत लता मंगेशकर मनहर की आवाज़ों में। बोल हैं आनंद बख्शी के संगीत, एक बार फिर है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद किया है दयानंद कॉलेज भवानीपेठ सोलापुर से विष्णु मस्किन, रितिका मस्किन, वानी आरव, चंद्रकला गणेश काशीनाथ, संगीता मस्किन, आरोही प्रियांशी सोनी। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाकतरिया, धाकड़ भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया, रियांश वाकतरिया और प्रतीक वाकतरिया। एटा रोडगंज जुंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम। ग्राम कुंजनगर पोस्ट जयनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेमलता देवांगन, अमीर तांजे, महिमा देवांगन, शेवा देवांगन। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनोद पुरी। मेहरनगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत घ्वाणकर, राही श्रीमती सरिता घ्वाणकर, प्रणीता सिद्धांत घ्वाणकर, अर्जुन घ्वाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश घ्वाणकर, सुमित घ्वाणकर, कुमारी ध्वनि घ्वाणकर, परी प्रिंस एकांश घ्वाणकर। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार बल्लू निषाद और तरुण यादव। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार सायक, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा। उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेला बाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह। और पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत हीरो फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं समीर की रचना, साधना सरगम उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म अनाड़ी से, संगीत है आनंद मिलिंद का और इस गीत को पसंद किया है दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। चरौदाबार नवापारा जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमीला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर ने। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान और डुग्गू ने। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा ने। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाभिक ढिंगरा। शाहूनगर यवतमाल से राहु मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी। जलाना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, रामभाऊ तांदले। धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते। बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सरवा, आशा सरवा।

नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी, सारवानी। टोरोवाल जिला नवनगर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका वाणी थांदी ने। जिला करनाल हरियाणा से बिजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन साहिल और वाणी जयजान ने। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अब कार्यक्रम में सुनते हैं आवारगी फिल्म से गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। रचना आनंद बख्शी की, संगीत अनु मलिक का है और इस गीत को सुनना चाहा है टिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम हिमांशु, अनुष्का ऐश्वर्या, प्रीतम मनोज यादव, कस्बा वराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत गुरशब्द सिंह राहुल, भागलपुर उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुमार मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढेंगिया, नमन ढेंगिया, अपार ढेंगिया, आमा खोड़रा रेंगाखार जिला कवर्धा से देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह नेताम, दक्ष प्रिया गीत सरगम नेताम, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने। आप सभी ने पसंद किया है इस गीत को, तो सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये गीत, आग और शोला फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू तिरुपति साहू का, फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, बाजार रोड मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिश्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यस मंसूरी, गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बरासा, विशाल बरासा, विकास बरासा, रोशनी बरासा, शगुन बरासा, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय, पाटन गुजरात से धीरज वी रबारी, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, पश्चिमपुरी से उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा जुनेजा, अनमोल जुनेजा, साहिबा गुप्ता, शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया सायजदा, रानी हीना कौसर, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, और चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं जीत फिल्म से गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। समीर की रचना, संगीत नदीम चवन का। सुनना चाहा है इस गीत को बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छटकी, शरद कुमार डडवानी और पूरा माखीजा कुटुम्ब। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदिनी कुमारी। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहानकर, निर्मला नुहानकर, विशाल नुहानकर, सोपान ताड़े। मालकापुर से नारायण इंगले, राजकुमारी खर्चे, आशीष। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। रावर करनाल से विनोद लखनपाल। हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और पूरा खन्ना परिवार। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदोरकर, सदानंद मंदोरकर, कुमार गौरव मंदोरकर। पुणे महाराष्ट्र से बाबा साहेब बाड़ोदे, पंकज आर्य, पंकज बाड़ोदे। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। कश्मीर से परजादा मिराज उद। जिला बखर पंजाब से मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

और कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं दीवाना फिल्म से गीत, साधना सरगम कुमार सानू की आवाज में। समीर के बोल हैं, संगीत नदीम चवन का है और इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है देवरी भाट्टापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश गन्नू, लाल रजक, मुरली क्षत्रिय का, चर डोंगरी पिपरिया जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी का, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, गांव जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन प्रजापति, लवीस प्रजापति, मुनेश देवी प्रजापति, गांधीनगर गुजरात से सुरेश मंजुला विशाल और निशानी। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: इसी गीत के साथ इंस्टा फरमाइश सोशल मीडिया की गूंज कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात के 8:45 हुए ही समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने

0: जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4 लाख

0: 40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब

0: सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: Surat sirf swachhta aur circular economy tak hi simit nahi hai balki green growth ke dusre madhyamon ka bhi abhutpurva gati se vistar ho raha hai. Surat aisi vyavastha banane mein juta hai jahan sadkon par chalne wali sari basein electric hongi, sath hi yahan Surat metro ka bhi vistar ho raha hai. ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
2: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में हीर रांझा फिल्म से गीत। कैफी आजमी की शब्द रचना है, संगीत एक बार फिर है मदन मोहन का।

और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में हम किसी से कम नहीं फिल्म का गीत। मजरूह की रचना है, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस समय रात के 9:30 हुए हैं। लीजिए पेश है श्रोताओं के फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का अभिवादन आत्मीय मधुर आप सभी का स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम में मैं पूनम उपाध्याय, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। इस कार्यक्रम में पहला गीत लीजिए सुनते हैं सिलसिला फिल्म से, लता मंगेशकर अमिताभ बच्चन की आवाज़ में। जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत है शिवहरि का, और इस गीत को पसंद किया है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, डुग्गू आशिक चौहान। बालौदा छत्तीसगढ़ से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंदेल दास देवांगन, रीता दास, जतिन कुमार, चंद्रावती सिंह मरावी, नूर साय राजवाड़े, समीर सिंह मरावी, सोनू सिंह मरावी। जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश पलेरा से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराड़े, साफिया अरहान खोकर और मोहम्मद हसनैन पवार। पदमपुर जिला श्रीगंगापुर, एक बार फिर से सुनिए, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, ये श्रोता साथी हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। सोंगा मगरलोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हिंश कुमार चंदन। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। आप सभी श्रोताओं के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।
1: तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
2: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं गीत बाजार फिल्म से, लता मंगेशकर तलत अजीज की आवाज में। संगीत है खयाम का, सुनना चाहा है इस गीत को दिल्ली से स्वीटी और प्रतिभा, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, जोड़ा पीपल अंबिकापुर से स्वरूप आनंद सरजा।

काल और परिवार के सभी सदस्य। गांव टोरोवाल, जिला नवा शहर, पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका वाणी थांदी। उदयपुर से रमेश नचानी, भारती नचानी, विनीत नचानी, बाबू भाई। बैलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिवप्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास, ओमिन उत्तरा, प्रमिला यमुना, जमुना कुमारी, अंजू मंजू कुमारी, युवती देवदास। राजधानी रायपुर से

देवदास, मोहित कुमार देवदास, ओमिन उत्तरा, प्रमिला यमुना जमुना कुमारी, अंजू मंजू कुमारी, युवती देवदास। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। राजकोट से पूजा पायल, प्रवीण सोनी, कंचन कुसुम, कलावती जवाली, जगदीश जौहरी। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से पेंटर विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया, ईशु बाबा शैतान सिंह। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। मेहरनगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत घुआणकर, राही श्रीमती सरिता घुआणकर, प्रिंस एकांश घुआणकर, अर्जुन घुआणकर, टुक टुक। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त और चेतन नाहटा। रावर करनाल से विनोद लखनपाल। अमरावती महाराष्ट्र से सैयद भाई, सुफियान अनस। महाराष्ट्र नांदूरा से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ों में कभी कभी फिल्म से गीत, साहिर की रचना, संगीत खयाम का। और सुनना चाहा है इस गीत को मिठू मोड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल शिवास, कौशल शिवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई। राजौरी गार्डन नई दिल्ली से ध्वनि और सानवी। पाकुड़ झारखंड से कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्नव आनंद, सत्यम आनंद। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। कुरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू, दीपिका साहू। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। ग्राम लसोड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका रमेश चंद्रदागी। बाजार रोड मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सविस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े। बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ईमेल की गूंज कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए सनी फिल्म से गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत आरडी बर्मन का है और इस गीत को पसंद किया है ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी कृष्टि पटवा। ग्राम पीपल रोड सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। बिलासपुर से छन्नूलाल शिवास, अनीता पुष्पा शिवास, अंजू योगिता शिवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी ने। जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जसवाल, गणेश जसवाल, शुभम प्रसाद जसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जसवाल। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। गांव हीरा वाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। साकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी। संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। जगदलपुर बस्तर से पुष्पांजलि नायडू, प्रीतम, अमृता, संतोष, दुर्गेश कुमार। बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाणे, भारती रंभाणे, जानवी रंभाणे, वैष्णवी हर्षल रंभाणे। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं ये कार्यक्रम का अंतिम गीत सन्नी फिल्म से।

मेल की गूंज कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम राग प्रधान। इस कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं लाल पत्थर फिल्म से, मन्ना डे आशा भोसले की आवाज़ों में। नीरज की रचना, संगीत शंकर जयकिशन का है और ये गीत राग यमन पर आधारित है। राग यमन की रचना कल्याण थाट से मानी गई है। इस राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। ग वादी और नी संवादी माना जाता है। आरोह और अवरोह में सातों स्वरों की रचना की जाती है और इनका प्रयोग किया जाता है। तो सुनते हैं राग यमन पर आधारित ये गीत लाल पत्थर फिल्म से।

लाल पत्थर फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे आशा भोसले की आवाज़ों में। अब सुनते हैं जाने अनजाने फिल्म से ये गीत मन्ना डे की आवाज़ में। बोल हैं SH बिहारी के, संगीत एक बार फिर शंकर जयकिशन का है और यह गीत राग दरबारी पर आधारित है। यह राग असावरी थाट से उत्पन्न हुआ है। इसमें ग, ध और नी, गांधार, धैवत, निषाद कोमल लगते हैं, शेष सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इसका वादी स्वर ऋषभ और समवादी स्वर पंचम है। तो आइए सुनते हैं इस गीत पर, इस राग पर आधारित ये गीत।

जाने अनजाने फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज़ में। अब सुनते हैं बुढ़ा मिल गया फिल्म से गीत मन्ना डे अर्चना की आवाज़ों में। मजरूह की रचना है, संगीत आरडी बर्मन का है और ये गीत राग खमाज पर आधारित है। ये खमाज थाट से संबंधित षड़ज संपूर्ण जाति का रात्रिकालीन राग है। आरोह में ऋषभ वर्जित और शुद्ध निषाद व्यवहार में लाए जाते हैं। अवरोह में कोमलनी का प्रयोग होता है। ये शांत प्रकृति का राग है। तो आइए सुनते हैं राग खमाज पर आधारित ये गीत।

शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग प्रधान अभी आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अब सुनते हैं परिचय फिल्म से गीत भूपेंद्र की आवाज में। मजरूह की रचना है, संगीत आर डी बर्मन का है और ये गीत राग मिश्र हेमंत पर आधारित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत मधुर और काव्यात्मक राग है। यह राग मुख्य रूप से बदलते मौसम या संध्याकाल की शांत और ठंडी बेला से जुड़ा हुआ होता है। यह बिलावल थाट का राग है। इसकी जाति औड़व संपूर्ण है। आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। वादी स्वर मध्यम है और संवादी स्वर सड़ज है। गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। तो आइए सुनते हैं इस राग पर आधारित परिचय फिल्म से ये गीत।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं संत तुलसीदास, फिल्म से गीत पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में, संगीत है राम कदम का। ये गीत राग जौनपुरी पर आधारित है। राग जौनपुरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत मधुर और कोमल प्रकृति का राग है, जो अपने गंभीर और भावपूर्ण सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यह असावरी थाट पर आधारित है। इसकी जाति शाड़व संपूर्ण है। वादी स्वर धैवत, समवादी स्वर गांधार है। वर्जित स्वर आरोह में गंधार वर्जित है। कोमल स्वर गंधार, धैवत और निषाद कोमल लगते हैं। शेष स्वर शुद्ध होते हैं। इसका गायन समय दिन का दूसरा या तीसरा प्रहर है। तो आइए सुनते हैं राग जौनपुरी पर आधारित ये गीत।

और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाजों में आविष्कार फिल्म से गीत। संगीत है कानू रॉय का और ये गीत राग भैरवी पर आधारित है। ये भैरवी थाट से संबंधित संपूर्ण जाति का बहुत ही लोकप्रिय राग है। रे ग ध और नी इसके कोमल स्वर माने जाते हैं। इसी क्रम में मध्यम और षड्जवादी संवादि होते हैं। इसका राग प्रकृति चंचल है। तो सुनते हैं राग भैरवी पर आधारित ये गीत।

इस गीत के साथ शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग प्रधान अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भामन। इस कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं मनहर आनंद कुमार और कंचन की आवाज़ों में कुर्बानी फिल्म से गीत। इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखा है ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति श्रीमती जानकी प्रजापति घनश्याम हरिशंकर प्रशांत रत्नेश प्रजापति ने। ग्राम राजापुर लकरापारा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से पत्र आया है खेल साय मरकाम नयन प्रकाश मरकाम शारदा मरकाम संतोषी मरकाम रूपमती मरकाम का। चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह ने पत्र लिखा है ग्राम परसाटोला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी मसिया तुषारणी मसिया खुमेंद्र मसिया ने भी सुनना चाहा है इस गीत को। इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है जरूर वरुण जिला अमरावती से बाबा साहेब वाड़ोदे आदि चरपे आर्या वाड़ोदे चंद्रप्रभा वाड़ोदे ने। शिवाजी चौक राजिम से पत्र लिखा है अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार रोशन कुमार बंशीलाल रेखा देवी श्वेता देवी और लवी श्रीवास्तव ने भी सुनना चाहा है इस गीत को। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेर मेहराज जहां ये श्रोता साथी हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। तो सुनते हैं आप सभी के पसंद पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे कुर्बानी फिल्म से, मनहर आनंद कुमार कंचन की आवाज़ों में। अब सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म से गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। इंदिवर के बोल हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, और इस गीत को सुनना चाहा है बलौदा अलकतरास से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, मेहरनगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत घुआणकर, राही सरिता घुआणकर, सिद्धांत घुआणकर, प्रिंस एकांश घुआणकर, विश्वकर्मानगर नागपुर से शैलेश घुआणकर, वैशाली घुआणकर, ध्वनि घुआणकर, एरोड्रम थाना वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे ने जिला खंडवा

0: बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे ने। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी, मनन और तानिया। वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौंड, मोहम्मद शादाब खत्री। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या भाई सुच्चा पाठक। नवगढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा। आप सभी ने पसंद किया है इस गीत को, तो सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म धर्मात्मा से।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं मिस्टर नटवरलाल फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में, बोल हैं आनंद बख्शी के संगीत राजेश रोशन का है और इस गीत को सुनना चाहा है गड़िया मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी, पीपरपारा पालचुवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन वंशिका दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु अंकित देवांगन, मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू ऋतु सिंह, ऋषभ सिंह, धरसीमा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से रोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदीहा खान, आसमा सलीहा, सालिया शोएब खान, पोतरा मुस्ताबा खान, सादिक भाई और शाहिद भाई, आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं लावारिस फिल्म से गीत आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और इस गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ चोड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अल अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा ने। लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, नीलम पुरी, बीके पुरी, कमलेश पुरी, रामापुरी, आरएस पुरी ने। मेहरनगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत घुआणकर राही श्रीमती सरिता घुआणकर, प्रिंस एकांश घुआणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश घुआणकर, श्वेता सुमित घुआणकर, ध्वनि घुआणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत घुआणकर, प्रणीता घुआणकर और टुकटुक घुआणकर। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिपा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी। सारसताल सोनगरा से प्रेम साय राजवाड़ी, सुमार साय, मेर साय, शिव भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन। गांव फ्रासी से राजकुमार डुड्डी, सरजीत सिंह डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी। हासी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी।

भाष योगी बब्बू डब्बू बेरड़ी से हुकुम करमकर सुनीता करमकर हार्दिक करमकर प्राची करमकर तनु करमकर गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जैतेक बिरक मीका बिरक आप सभी ने इस गीत को पसंद किया है तो सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10:17 हुए हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।